हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। गांव मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और खास करके गांव की नदी, वो नदी जिससे न जाने हमारे कितने बचपन के सपने जुड़े होते हैं, कितनी कहानियां जुड़ी होती है। जब हम परेशान हो जाते हैं तो नदी किनारे जाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। कभी अगर एक्साइटेड होते हैं तो उसी नदी में डुबकी लगाते हैं और स्विमिंग करने लग जाते हैं। तो गांव की नदी से एक खास रिश्ता जरूर होता है। तो ऐसी कहानी एक लेके आया हूं मैं आप सभी के लिए, नदी के पार वाला सपना। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव भवानीपुर में सुबह का मतलब अलार्म नहीं होता था। सुबह का मतलब होता था मुर्गे की आवाज, कुकड़ुक, सुबह 4:30। मिट्टी की खुशबू और दूध वाले के बर्तनों की खनक, और साथ ही साथ वही गांव में रहते थे केशव और उसकी पत्नी गंगा। उनका घर बहुत छोटा था, मिट्टी की दीवारें, छत पे पुराने टीन के पत्रे और आंगन में एक नीम का पेड़। पर उस घर में एक चीज बहुत बड़ी थी और वो थी प्यार। केशव ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, बस 3री तक स्कूल गया था। उसके बाद पिता के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिया था। अब वो गांव के मंदी में बोरियां उठाता था, कभी किसी के खेतों में हल चलाता था, कभी ट्रैक्टर चलाता था। महीने के मुश्किल से 15,000 रुपए कमा पाता था। और गंगा भी अनपढ़ी थी, नाम लिखना तक नहीं आता था, पर दिल समंदर से भी ज्यादा बड़ा था। वो रोज सुबह 4 बजे उठती थी, पहले चूल्हा जलाती थी, फिर पानी भरने को किलोमीटर तक दूर कुएं तक जाती थी, कपड़े धोती थी, बकरियों को चारा देती थी और शाम तक घर संभालती थी। दोनों की शादी को 5 साल हो गए थे। एक चीज थी जो गंगा को रोज नोटिस होती थी, केशव का थका हुआ चेहरा। रोज सुबह वो साइकिल लेकर मंडी जाता था। मंडी उनके घर से 15 किलोमीटर दूर थी। चाहे बरसात हो या हो फिर गर्मी या सर्द हवा, चाहे कितनी भी थकान क्यों ना हो कि चाहे कितनी भी तबीयत खराब क्यों ना हो, केशव साइकिल चलाता ही रहता। और कई बार उसकी साइकिल रास्ते में खराब भी हो जाती थी, कभी चैन टूट जाती, कभी टायर पंक्चर हो जाता। एक बार तो तेज बारिश में वो गिर भी गया था। उस दिन रात को गंगा ने उसके पैर दबाते हुए पूछा था, बहुत दर्द हो रहा है क्या? केशव मुस्कुरा दिया, अरे पगली, आदमी का शरीर काम करेगा तभी तो घर चलेगा। पर उसकी मुस्कुराहट के पीछे की थकान गंगा देख चुकी थी। उस रात गंगा ने पहली बार एक सपना देखा, अपने पति को बाइक पर बैठकर हंसते हुए देखने का सपना। अगली सुबह केशव मंडी चला गया, गंगा रोटियां बना रही थी, तब उसकी नजर पुराने स्टील के डब्बे पर पड़ी। उसने डब्बा उठाया, साफ किया और धीरे से बोली, इसमें जमा करूंगी पैसा। उस दिन से उसने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए वो केशव को एक बाइक गिफ्ट करके रहेगी। पर प्रॉब्लम ये थी कि घर का खर्चा भी बहुत मुश्किल से चलता था। 15,000 में राशन, बिजली, दवाई, कपड़े, ये सब कुछ मैनेज करना मुश्किल था। लेकिन गंगा ने ठान लिया था, उसने खुद पर खर्चा करना भी कम कर दिया था। नई साड़ी बाद में ले लेंगे, मेला जाना बंद, चूड़ियां भी बाद में ली जाएगी। कभी कभी तो वो अपनी चाय में चीनी कम डाल देती थी ताकि 1-2 रुपए बचा सके। केशव को कभी पता नहीं चला, हर महीने वो किसी ना किसी तरीके से 2,000 रुपए बचा लेती, कभी दूध बेचकर, कभी दूसरों के घर पापड़ बनाकर, कभी सिलाई करके, और वो पैसे छुपा देती उस स्टील के डब्बे में। हर बार पैसा डालते वक्त वो डब्बे को हाथ लगाकर बोलती, एक दिन मेरा केशव बाइक पे जाएगा, साइकिल पे नहीं। समय धीरे धीरे गुजर गया, 3 साल बीत गए
पूरे 3 साल तक गंगा ने हर महीने पैसे बचाए। कभी बुखार, कभी सर दर्द, इन सारी हालतों में काम किया। कभी कभी भूखी भी सोई। एक बार केशव ने कहा भी, गंगा तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? वो हंस पड़ी, बस थोड़ी थकान है। उसने कभी सच नहीं बताया। एक दिन गांव में मेला लगा, सारी औरतें सच धज कर गई, चंदा भी गई। चंदा गंगा की सबसे अच्छी दोस्त थी, थोड़ी पढ़ी लिखी थी, गांव के लोगों के लेटर्स भी वो पढ़ती थी। चंदा ने पूछा, तू मेला नहीं आएगी? गंगा ने झूठ बोला, मन नहीं है। असल में उसके पास पैसा था, पर वो पैसा उसके सपने का था। उस रात जब केशव सो गया, गंगा ने डब्बा खोला, उसने धीरे धीरे पैसे गिनने शुरू किए। 72,000 रुपए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बस थोड़ा और फिर मेरे केशव की बाइक आ जाएगी। फिर मेरा केशव बाइक पर बैठकर सारा गांव घूमेगा, अपने काम पर जाएगा, मुझे अपने बाइक पर पीछे बिठाकर मेला घुमाने लेके जाएगा। न जाने ऐसे कितने सपनों में गंगा खो गई। दोस्तों, गांव की कहानियां कितनी प्यारी होती है, कितनी सिंपल होती है, कितनी सरल होती है, लेकिन इन कहानियों के पीछे कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत उस किरदार को उठानी पड़ती है जो वो कहानियों को जीता है। तो इस कहानी का अगला भाग सुनेंगे हम इस ब्रेक के बाद। तब तक सुनते रहिए आचार्य 90 FM।

स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त स्वागत करता हूँ आपका आचार्य 90 FM में। हम सुन रहे थे नदी के पार वाला सपना और हमने देखा और हमने सुना कि कैसे गंगा ने 72,000 रुपए बचा लिए अपने केशव के लिए। और अब देखते हैं कि किस तरीके से गंगा केशव को बाइक गिफ्ट करेगी। उसी गांव में एक लड़का भी रहता था, उसका नाम था अजय। अजय थोड़ा गलत व्यवहार वाला लड़का था और लोगों गलत लोगों के साथ रहकर वो चोरी चकारी शराब पीना जुआ खेलना कर्जा न जाने कितनी कितनी चीजों में फंसा हुआ था। उसने उसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। गांव वाले उससे दूर रहते थे। एक दिन वो रात को शराब के नशे में घूम रहा था, तब उसने गंगा को स्टील का डब्बा छुपाते हुए देख लिया। अजय की नजर पैसे पर पड़ गई। उसने सोचा लगता है काफी पैसा है। उस रात उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी और वो था डब्बा। उस रात तेज हवा चली, केशव थककर गहरी नींद में था, गंगा भी सो गई थी। आधी रात को अजय धीरे से घर के पीछे अंदर घुसा। उसने चूल्हे के पास मिट्टी हटाई और उसे स्टील का डब्बा मिल गया। उसका दिल जोर जोर से धक धक धक धक धक धक कर रहा था। बस एक बार ये पैसा मिल जाए। वो डब्बा लेकर भाग गया। सुबह गंगा ने जैसे ही डब्बा चेक किया, उसकी सांसें रुक गई। डब्बा गायब था। पहले उसे लगा शायद कहीं और रखा होगा। उसने पूरा घर उल्टा दिया, आंगन छान लिया, चूल्हा भी पूरी तरीके से खोद दिया, बिस्तर पलट दिया, सब कुछ कर लिया, पर डब्बा नहीं मिला। उसके पैर कांपने लगे थे। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगी। पर उसी वक्त केशव घर के अंदर आ गया। गंगा तुरंत आंसू पहुंचने लगी और चुप हो गई। क्या हुआ, केशव ने पूछा। कुछ नहीं, गंगा ने धीमी आवाज में जवाब दिया। तू रो रही है, केशव ने बोला। नहीं, मैं नहीं रो रही, गंगा ने जवाब दिया। केशव ने उसका माथा छुआ। तबीयत खराब है क्या, गंगा बस झूठी मुस्कान देकर रह गई। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया दिल टूटने की आवाज सच में होती है। शाम होने लगी, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। गंगा चुपचाप घर से निकली। उसके पैर सीधा गांव के बाहर वाली नदी की तरफ बढ़ने लगे। ये वही जगह थी जहां वो बचपन में बैठा करती थी। नदी के पास पहुंचते ही वो टूट गई। वो इतनी घुटन भरी थी उसके अंदर कि जैसे वो नदी के पास पहुंची, वो जोर जोर से रोने लगी। नदी माँ, मैंने क्या गलत किया, उसकी आवाज हवा में घूमने लगी। तीन साल तक मैंने पैसे जोड़े, मैं बस अपने पति को खुश देखना चाहती थी। उसने कभी कुछ मांगा नहीं, बस एक बाइक देना चाहती थी उसको मैं। वो रोते रोते ये सारी बातें बोलती गई। मैं उसे एक तोहफा देना चाहती थी, पर सब खत्म हो गया, सब बिखर गया। उसे नहीं पता था कि गंगा जब ये सारी बातें कर रही थी, कुछ दूर पेड़ के पीछे अजय खड़ा सब सुन रहा था। उसके हाथ में वही डब्बा था और पहली बार उसे अपनी चोरी पर शर्म आ रही थी। अजय चुपचाप गंगा की बातें सुनता रहा। हर लफ्ज उसके दिल में तीर की तरह लग रहा था। उसने डब्बा खोला, अंदर साफ सुथरे नोट थे, कुछ पुराने कुछ नए, और एक छोटी सी कागज की पर्ची।
उस पर गंगा ने अपनी तरफ से कुछ बना रखा था, एक आदमी, एक बाइक और उसके पास दिल का निशान। अजय की आंखें भर गई। उसे याद आया कि उसकी माँ भी उसके लिए पैसे बचाती थी और आज वो दूसरों की उम्मीद चुरा रहा था। नदी के किनारे गंगा अब भी रो रही थी, भगवान बस मुझे मेरा सपना दे दो, मुझे मेरा सपना लौटा दो। अजय का दिल कांप गया। उसने धीरे से कहा, मैं कितना गिर गया हूं। उस रात उसने पहली बार शराब की बोतल फेंक दी। रात गहरी हो चुकी थी। केशव घर के बाहर बैठा था, गंगा का इंतजार कर रहा था। तू इतनी देर तक कहां थी, केशव ने पूछा। गंगा ने झूठ बोला, आप चंदा के घर थी। केशव ने कुछ नहीं पूछा। रात को दोनों सो गए और आधी रात अजय फिर उस घर के पास आया, पर इस बार चोर बनकर नहीं, पछताया हुआ इंसान बनकर। उसने धीरे से वही डब्बा उसी जगह वापस रख दिया और उस 72,000 रुपए के साथ उसने उसमें कुछ अपने पैसे भी रख दिए, लगभग 15,000। उसने एक कागज निकाला, उस पर लिखा, माफ कर देना बहन, मैंने पाप किया, पर आपका प्यार देखकर समझ गया कि गरीबी से बड़ा गुनाह इंसानियत खोना होता है। अजय ने नोट डब्बे के नीचे रख दी और चुपचाप चला गया। अगली सुबह को क्या हुआ, ये सुनने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आ रहा है एक ब्रेक और हम मिलेंगे ब्रेक के बाद। तब तक सुनते रहिए आचार्य 90 FM।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सुन रहे थे कि अजय ने वो डब्बा फिर से वहां वापस लौटा दिया। अब अगली सुबह क्या हुआ, तो चलिए देखते हैं अगली सुबह क्या हुआ। अगली सुबह गंगा ने आदत से डब्बे वाली जगह देखी और उसकी चीख निकल गई, हे भगवान! डब्बा वापस था, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने तुरंत डब्बा खोला, पैसे भी थे और पहले से ज्यादा थे। उसकी आंखें भर गई, आंसू गिरने लगे, ये कैसे हुआ? फिर उसकी नजर कागज पर पड़ी, पर वो अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो चिट्ठी पढ़ नहीं सकती थी। उसने कागज संभाला और सीधा चंदा के घर भागी। चंदा, चंदा, चंदा बाहर आई। चंदा, ये पढ़ना, इस पे क्या लिखा है? चंदा ने कागज लिया, धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। बाहर आई, चंदा ये पढ़ना, इस पे क्या लिखा है? चंदा ने कागज लिया, धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो वर्ड्स बोलती गई, गंगा की आंखों से आंसू बहते गए। माफ कर देना बहन, मैंने पाप किया, मैं पैसे ले गया था, पर तुम्हारी बातें सुनकर समझ गया। चंदा ने पढ़ना रोका। गंगा, तेरा पैसा किसी ने चुराया था क्या? गंगा चुप हो गई। उसने नोट को अपने सीने से लगा लिया। भगवान उस इंसान को सही रास्ता दिखाए। बस ये कहकर गंगा अपने घर आई। कुछ दिनों बाद गांव में एक नई बाइक आई, काली चमकदार बाइक। केशव ने दूर से देखा और बोला, वाह क्या बाइक है। तभी गंगा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चल। किधर चल? अरे बस चल। और दोनों बाइक के पास चले गए और गंगा ने कहा, अब आंख बंद करो, आंखें बंद करो। केशव ने आंखें बंद की और गंगा ने धीरे से उसका हाथ आगे खींचा और केशव के हाथ में रख दी उस बाइक की चाबी। केशव हैरान, ये क्या है? तुम्हारी बाइक। केशव हंस पड़ा, पागल है क्या? नहीं, सच में तुम्हारी बाइक है। कहां से आई ये बाइक? गंगा ने मिक्स्ड इमोशन वाली आवाज में कहा, 3 साल से पैसे जोड़ रही थी केशव। केशव चुप हो गया। दोनों के आंखों में आंसू थे, खुशी वाले थे या गम वाले थे इसका पता नहीं, पर इतना जरूर जानता हूं कि दोनों बहुत खुश थे। तू मेरे लिए? गंगा मुस्कुराई। तुम रोज साइकिल पे इतना दूर जाते थे ना? केशव ने तुरंत उसके पैर छू लिए। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? केशव ने जवाब दिया, तू मेरी पत्नी नहीं, तू मेरी ताकत है गंगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू मुझे और मेरे बारे में इतना कुछ सोचती है। और पहली बार उस वक्त केशव ने गंगा से 5 साल में पहली बार कहा, आई लव यू। उस दिन दूर से अजय सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्का सा सुकून था। उसने पहली बार महसूस किया था कि इंसानों के पैसे नहीं, इंसानों को नीयत से अमीर होना होता है। कुछ दिनों बाद अजय ने चोरी छोड़ दी, गांव के मैकेनिक के पास काम शुरू कर दिया। लोग उस पर पहले भरोसा नहीं करते थे, पर धीरे धीरे उसने सबका दिल जीत लिया। एक दिन केशव बाइक सर्विसिंग के लिए गया उसी गैरेज में जहां अजय काम करता था। अजय ने बाइक पहचान ली, वही बाइक जिसके लिए एक औरत ने 3 साल सपना देखा था। अजय की आंखें भर गई। केशव बोला, क्या हुआ? अजय हल्का सा मुस्कुरा दिया, कुछ नहीं भैया, बस बाइक बहुत खास है। ये कहकर अजय अंदर चला गया। एक शाम गंगा फिर उस नदी के पास गई, पर इस बार वो रो नहीं रही थी। उसने पानी को देखकर कहा, उस दिन मैंने दर्द बताया था, आज खुशी बताने आई हूं। हवा धीरे से चली, जैसे नदी भी मुस्कुरा रही हो।
दूर केशव बाइक लेकर आ रहा था। गंगा, वो हंस पड़ी और भागकर बाइक पर बैठ गई। केशव ने पूछा, कहाँ चले? गंगा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जहां सपने पूरे होते हैं। बाइक धीरे धीरे मिट्टी के रास्ते पर आगे बढ़ने लगी।

और पीछे पीछे नदी की लहरें चुपचाप एक कहानी सुना रही थी कि सच्चा प्यार कभी चोरी नहीं होता, वो तो और बढ़ जाता है। तो दोस्तों, हम सुन रहे थे नदी के पार वाला सपना, एक ऐसी कहानी जहाँ केशव और गंगा एक पति पत्नी हैं। एक पत्नी ने अपने पति के लिए एक सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए उसने दिलो जान से मेहनत की। उम्मीद है कि ऐसी कहानियाँ हमारे अगल बगल में भी होती होंगी, पर शायद हम कभी उसे देखते नहीं या महसूस नहीं कर सकते, या कभी ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कहानियों को हम नज़रअंदाज करते हैं, पर हम ये नहीं जानते कि किसी की छोटी से छोटी मेहनत भी उस इंसान के लिए क्या मायने रखती है। तो बस आज के कहानी में इतना ही। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और अगली बार जरूर मिलेंगे कुछ अच्छी कहानियां लेकर जो आपकी दिल को छुए। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्टन दोस्त आरजे शब्बीर साइनिंग ऑफ।

0: श्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।
1: 10, 9, 8, 7.

आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। भाई कैसे हैं हमारे प्यारे ऑडियंस जी, ऑल गुड ना? गणेश चतुर्थी के सीजन में सब अच्छा ही होता है और हमारे स्वाद का जायका इस शो पर कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज को ट्राई करने का एक और अच्छा बहाना हमें दोबारा से मिला है। महाराष्ट्र में त्योहार तो कई सारे मनाए जाते हैं और गणपति मीन्स गणेशोत्सव में सेलिब्रेशन मतलब एक से एक टेस्टी खाने का मौसम है कि नहीं। वैसे हम सबके फेवरेट गणेश जी के स्वागत में कई सारे व्यंजन बनते हैं, जैसे कि मोदक, लड्डू, पूरनपोली, शीरा, पायसम या खीर वगैरह वगैरह। ये सब तो मिठाइयां हैं, अब मीठा खाएं तो कितना खाएं भाई साहब। गणेश जी की आरती के समय तरह तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है। इस दौरान चने की दाल को यूज करके एक चटपटी सी रेसिपी को बनाया जाता है। वाटली दाल इस नाम से फेमस रेसिपी को खाना मीन्स मिठाई खाने के बदले कुछ इंटरेस्टिंग और टेस्टी खाने वाली फेवरेट बात इस तौर पर हम देख सकते हैं। ये एक टाइप का ड्राई स्नैक है। वाटली इस शब्द का मीनिंग है पीसी हुई और दाल तो हम सब जानते ही है, वाटली दाल मतलब पीसी हुई दाल। भिगोई हुई चना दाल को दरदरा पीसकर कुछ मसालों के साथ भूनकर तैयार किया जाता है। अब हम इस वाटली दाल की रेसिपी को सुनते हैं। वाटली दाल बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स, चना दाल एक कटोरी। इसे अच्छे से धोकर 4-5 घंटे तक पानी में भिगोकर रखना है। हरी मिर्ची स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं लगभग 3-4 हरी मिर्ची ले रही हूँ। जीरा एक छोटा चम्मच, अदरक 1 इंच, इसे धोकर कद्दूकस कर लेना है। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं लगभग 1/2 चम्मच नमक ले रही हूँ। तेल 2 बड़े चम्मच, राई मीन्स सरसों 1/2 चम्मच, हींग 1 चुटकी, कड़ी पत्ता 10 से 12 पत्ते, नींबू का रस 1 छोटा चम्मच, शक्कर 1/2 चम्मच, बारीक कटा हुआ हरा धनिया अप्रोक्सीमेटली 2 चम्मच, ताजा नारियल कद्दूकस करके अप्रोक्सीमेटली 4 चम्मच और मेन इंग्रेडिएंट ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली है। भाई हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स तो अब हो गए हैं तैयार और वाटली दाल की रेसिपी सुनने के लिए हमारे प्यारे ऑडियंस जी हो रहे हैं कितने बेकरार। तो चलिए अब हम इस वाटली दाल की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मिक्सर का एक जार, उसमें हम डालेंगे भिगोई हुई चना दाल। हमें चना दाल को पीसना है। इस प्रोसेस में हम एक्स्ट्रा पानी को हटा देते हैं। उस चना दाल में हम ऐड करेंगे हरी मिर्ची के टुकड़े और जीरा। फिर हम डालेंगे

लेंगे अदरक, हल्दी और थोड़ा सा नमक। इन सब के साथ हमें डालना है हमारा मेन इंग्रेडिएंट ढेर सारा प्यार। अब इन सब चीजों को हमें दरदरा सा पीस लेना है। ध्यान रहे कि मिक्सर में पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। अब इस पीसी हुई दाल को हम ट्रांसफर करेंगे एक बर्तन में। इस बर्तन को हम प्रेशर कुकर में रखेंगे। मध्यम आंच पर लगभग 2 सीटी होने तक हमें इसे पकाना है। इतना सारा काम करके मैं तो थक गई भाई साहब, आई नीड अ ब्रेक।

आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। भाई लगभग 2 सीटी आने तक हमने चना दाल को पका लिया है। अब लगभग 20-25 मिनट तक हम प्रेशर कुकर को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब प्रेशर कुकर ठंडा हो जाए तब हम एक चम्मच की मदद से दाल को अलग अलग कर देंगे। अब इस पकी हुई दाल को हम लगाएंगे खुशबूदार तड़का। इसके लिए एक कढ़ाई में हम गरम करेंगे थोड़ा सा तेल। तेल गरम होने के बाद उसमें हम डालेंगे राई। राई को आप चटकने दीजिए। फिर हम उसमें ऐड करेंगे जीरा, हींग और कड़ी पत्ता। आहाहा, क्या महक! कड़ी पत्ता को डालते ही हम गैस को बंद कर देंगे। फिर इस खुशबूदार तड़के में हम डालेंगे पकी हुई दाल, उसके साथ नींबू का रस और थोड़ी सी शक्कर। एक चम्मच की मदद से हमें इसे मिक्स करना है। भाई जरा सुनिए तो, थोड़ा रुकिए तो, इसका डेकोरेशन वाला पार्ट अभी बाकी है। अब हम लेंगे सुंदर सी एक कटोरी। उस कटोरी में बड़े प्यार से हम डालेंगे कढ़ाई वाली दाल। फिर उस पर हम डालेंगे बारीक कटी हुई कोथमीर और उसके साथ कद्दूकस किया हुआ ताजा ताजा नारियल। भाई वाह, येलो कलर की चना दाल पर हरी कोथमीर और सफेद नारियल, जैसे के सुनहरी धूप से खुश हरियाली और हरियाली के साथ चमकती हुई बर्फ। क्या बात! यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी। Stay tuned.

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारी वाटली दाल अब भोग लगाने के लिए तैयार हो गई है। अब इसकी सात्विकता को बढ़ाने के लिए हम उस पर रखेंगे एक तुलसी पत्र। अब बड़ी श्रद्धा से अपने दोनों हाथों को जोड़कर हम भगवान श्री गणेश की आरती करेंगे। आरती होने के बाद इस वाटली दाल का हम भोग लगाएंगे। ऐसा करने से इसकी सात्विकता और ज्यादा बढ़ेगी। यकीन ना आए तो इस वाटली दाल को आप एक बार जरूर बनाइए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इसका टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप इस वाटली दाल को एक बार और जरूर मांग कर खाएंगे। भाई, हमारी संस्कृति और परंपरा की यही तो खासियत है, क्योंकि स्वाद और सेहत इन दोनों बातों को हम भोग के प्रसाद के रूप में खाते हैं और इसे अकेले नहीं बल्कि अपनों के साथ मिल बांट कर खाते हैं। इस वाटली दाल की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है वाटली दाल। गणेश जी के स्वागत में तरह तरह के भोग, मीठे खाने संग चटपटी दाल का संयोग। सिर्फ मीठा खाकर अगर हो रहे हो बोर और टेस्ट बर्ड्स करे चटपटा खाने का शोर, तब पेश कीजिए आप चटपटी वाटली दाल। इसे खिलाकर पूछिए आप अपनों का हाल। भिगोई चना दाल संग अदरक और मिर्ची, वाटली दाल को खाने सबकी नजर तिरछी। गरम तेल में डाला राई जीरा का तड़का, इसे पसंद करे हर लड़की और लड़का। तड़के में डाला राई और जीरा, कोथमीर संग नारियल जैसे हरियाली में हीरा। इसका स्वाद निखारने डाला नींबू का रस, मिक्सर में किया चना दाल को क्रश। वाटली दाल का टेस्ट है एकदम विशेष। तैयारी हुई है पूरी, अब पधारेंगे श्री गणेश। श्री गणेश के लिए हमारी छोटी सी सेवा, थाली में सजाइए मोदक लड्डू और मेवा। देसी खाने में है सेहत का राज छिपा, हेल्दी फूड के भोग से होगी बाप्पा की कृपा। आचार्य 90 FM पर स्वाद और सुरों की जोड़ी, विघ्नहर्ता के स्वागत में हमारी भी कोशिश थोड़ी। हमें आशीर्वाद देता गौरी पुत्र का हाथ। सब्सक्राइब आचार्य 90 FM और दीजिए हमारा साथ। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। चटपटी सी वाटली दाल तो हमने बना ली, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। भाई, गणेशोत्सव तो कई दिनों तक सेलिब्रेट होता है और हमारे गणपति बाप्पा को हर रोज नया मींस कुछ अलग टाइप का भोग लगाया जाता है। वैसे हमारा पारंपरिक स्टाइल वाला खाना बनाने से हमारी सेहत बिल्कुल अच्छी ही रहती है। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी।

वेलकम बैक। आप NDFM और मैं हूँ आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। हमारे महाराष्ट्र में एक स्पेशल भोग को चढ़ाया जाता है। पांच या पांच से ज्यादा खाद्य सामग्रियों को एक साथ मिक्स करके बनने वाला ये ट्रेडिशनल और फेमस प्रसाद है। ये टेस्ट में मीठा होता है। खिरापत इस नाम से फेमस इस रेसिपी को आज हम हमारे आचार्य 90FM के स्टूडियो में बनाने वाले हैं। इसे पंच खाद्य के नाम से भी जाना जाता है। ये बेहद आसान और टेस्टी महाराष्ट्रियन रेसिपी है। चलिए अब हम खिरापत बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। खिरापत बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स, सूखा नारियल मीन्स खोपरा, इसे कद्दूकस कर लेना है, और हमें अप्रोक्सीमेटली एक कटोरी भर के कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल चाहिए। फिर हमें चाहिए सूखा खजूर मीन्स खारिक, जिसे ड्राई डेट्स कहते हैं, ये लगभग 7 से 8, खसखस 1 बड़ा चम्मच, खड़ी साखर मीन्स मिश्री 4 चम्मच, किशमिश 2 चम्मच, इलायची 4। खिरापत बनाने की रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। सूखा नारियल तो हमने पहले ही कद्दूकस करके लिया है। अब हम खजूर को बारीक टुकड़ों में काटेंगे या फिर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम इलायची का पाउडर बनाएंगे। यहाँ पर मैं आपको हमेशा वाली एक टिप देना चाहती हूँ। साबुत इलायची को थोड़ी शक्कर के साथ मिक्सर में पीसने से इलायची का पाउडर एकदम आसानी से बनता है। फिर हम लो फ्लेम पर खसखस को भून लेंगे मींस लगभग 3-4 मिनट तक। अब मिश्री यानी कि खड़ी साखर को मिक्सर के जार में डालकर उसका पाउडर बनाना है। अब हमें लो फ्लेम पर नारियल को भी भून लेना है। इसे हल्का सुनहरा और कुरकुरा होने तक मींस अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट तक भून लेना है। फिर हम इसे ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम लेंगे मिक्सर का जार। उस जार में हम मिक्स करेंगे खसखस और खजूर को। इसे एक साथ मिलाकर हमें इसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे भुना नारियल। फिर पल्स मोड पर हम मिक्सर को चलाएंगे लगभग 3-4 बार बस। अब हम इसमें डालेंगे मिश्री मींस खड़ी साखर पाउडर, इलायची पाउडर और किशमिश। इसे चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। दैट्स इट। अब इस तैयार खिरापत को हम रखेंगे चांदी की सुंदर सी कटोरी में। फिर एकदम श्रद्धा से हम भगवान श्री गणेश की आरती करेंगे। उसके बाद इस खिरापत का भोग हम बाप्पा को लगाएंगे। उसके बाद क्या करें? तो भाई आरती होने के बाद अपनों के साथ मिल बांट कर इस खिरापत का लुत्फ मजे से उठाइए। भाई बारिश के मौसम में ऐसा हेल्दी फूड खाना, वो भी बाप्पा के प्रसाद के रूप में, ये तो एकदम अच्छी बात है। और अपने साथ हो तब इसकी मधुरता और निखर कर स्वाद लाती है। अगर आपको यकीन ना आए तो इस गणेशोत्सव पर आप इस खिरापत को जरूर बनाइए। अच्छा खाना खाइए और हमारे आचार्य 90FM के गीत गुनगुनाइए। इस खिरापत की तारीफ में पेश है एक कविता। कविता का नाम है मिठास वाली खिरापत। हेल्दी खाना खाने की दिखेगी शराफत, श्री गणेश जी की आरती में मिठास वाली खिरापत। जंक फूड खाना हेल्थ वाइज है रिस्की, खिरापत में डाला भुना खोपरा क्रिस्पी, खोपरे संग डाला थोड़ा सूखा खजूर, और भी चीजें डाली हैं, जरा सुनिए तो हुजूर। ड्राई डेट्स और खोपरे संग खसखस और इलायची, पारंपरिक खिरापत खाइए, ये नहीं है विलायती। मधुरता को बढ़ाने डाली खड़ी साखर, खुश होंगे आप खिरापत को खाकर, जब स्वाद और संस्कृति मिल जाएं एक साथ, तब अपनापन जताने की
खाने और खिलाने की बात। विघ्नों को हरने पधारे हैं श्री गणेश। हुआ खुशियों का आगमन, नमन तुम्हें हे विघ्नेश। श्री गणेश का मीनिंग नई सी शुरुआत। आचार्य 90 FM पर न्यू रेसिपीज हर बार। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। चलिए अब हम सुनते हैं एक क्विक रीकैप। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हमने सबसे पहले बनाई एक चटपटी सी वाटली दाल। भिगोई हुई चना दाल में हरी मिर्ची को डालकर हमने पीसा, फिर उसमें अदरक, हल्दी और नमक को भी ऐड किया। उसके बाद इसे प्रेशर कुकर में पकाकर राई, जीरा और हींग का छौंक लगाया, फिर धनिया और ताजा नारियल से उसे सजाया। उसके बाद हमने बनाई एक पारंपरिक रेसिपी। रोस्टेड खोपरा, खसखस और खारिक मींस ड्राई डेट्स को एक साथ मिलाकर उसमें शक्कर और इलायची को मिक्स किया। इस प्रकार गणेशोत्सव के इस पावन पर्व को हमने एकदम पारंपरिक तरीके से सेलिब्रेट किया। ऑडियंस जी, किया के नहीं जी? बिल्कुल किया। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें जरूर बताइए, और अगर आपको अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना हो तो वो भी हमें जरूर बताइए। अच्छा खाना खाइए और हमारे आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। लेकिन लेकिन लेकिन उसके पहले हमारे आचार्य 90 FM चैनल को आप जरूर

सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी दोस्ती एकदम पक्की हो जाएगी। ऐसा करने से हमारी और आपकी दोस्ती एकदम पक्की हो जाएगी। चलिए अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का। वापस मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं एकदम पक्का वादा। तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली बार हमने आपसे दोबारा मिलने का वादा किया था, भाई अपना वादा निभाने के लिए हमें तो आना ही पड़ा। कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड ना? अर्ज किया है आज का ये पल आपके नाम, इस शो का हर लम्हा भी आप ही के नाम है। इस पल के इंतजार में न जाने कब से हम बेकरार थे, आपके आने से ऑडियंस जी इस बेचैनी को मिला कुछ करार है। सोमवार की दोपहर में आप, शुक्रवार की शाम में भी आप, हर खाने के स्वाद में आप और हर स्वाद के जायके में भी आप। खाना बनाने की सोचूं तो ख्यालों में आप, गाना गुनगुनाने लगूं तो हर सुर में आप, सुरों की महफिल में आप और महफिल की रौनक भी आप, महफिल की शमा भी आप और उस शमा के परवाने भी आप। स्वागत है आपका इस जायकेदार महफिल में, आपके आने से तसल्ली पाई इस साहिल ने, आपके आने से बदले हमारे अंदाज और इस खुशी से खुश हुए सारे अल्फाज। हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी एक स्वीट डिश है। इसे बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट यूज होने वाला है वो एक फेमस सब्जी और आयुर्वेदिक औषधि भी है। इस सब्जी से पेठा भी बनता है। इसमें कैलोरी कम और पानी की मात्रा ज्यादा होती है। मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने की शक्ति इस सब्जी में है। इस अनोखी सब्जी को कुष्मांड के नाम से भी जाना जाता है। वैसे नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ सफेद पेठा मीन्स एश गॉड की। मराठी में इसे कोहड़ा के नाम से जाना जाता है। सफेद पेठा दिखने में गोलाकार और भारी वजन वाला होता है। इसका बाहरी हिस्सा कड़क और अंदरूनी हिस्सा जूसी होता है। पूरी तरह से पकने के बाद इस पर सफेद पाउडर टाइप परख दिखाई देती है। इस हेल्दी पेठा की सब्जी से आज हम बनाने वाले हैं पेठे का हलवा। इसे काशी हलवा नाम से भी जाना जाता है। कद्दूकस किया हुआ पेठा, देसी घी, चीनी और खोया का परफेक्ट कॉम्बिनेशन करके हम बनाने जा रहे हैं पेठे का हलवा। पेठे का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: सफेद पेठा अप्रोक्सीमेटली 1 किलो, चीनी अप्रोक्सीमेटली 1 कप या स्वाद के अनुसार, देसी घी 5-6 चम्मच, हरी इलायची 4-5, केसर के धागे 7 या 8, मावा या खोया 1/2 कप, मिल्क मसाला 2 चम्मच, मिक्स ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, अखरोट और पिस्ता सब 2-2, मुनक्का 10-12। और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। सबसे पहले पेठा को अच्छे से धो लीजिए, फिर हमें उसका छिलका और बीज हटाना है। छिलका और बीज हटाने के बाद उसे कद्दूकस करना है। कद्दूकस करना है मीन्स उसके बारीक टुकड़े कर लीजिए या तो फिर उसे ग्रेट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हरी इलायची का छिलका हटाकर उसका फाइन पाउडर बनाना है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती हूँ, साबुत इलायची को 1 या 2 चम्मच शक्कर के साथ मिक्सर में घुमाने से इलायची का पाउडर एकदम आसानी से बनता है। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी? फिर हम केसर के धागों को 1 चम्मच गर्म दूध में भिगोकर साइड में रख देंगे अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट के लिए। ऐसा करने से केसर उस दूध में अच्छे से घुल जाएगा और इस केसरिया रंग के दूध से पेठा हलवा बनाने की खूबसूरती में गजब का निखार आ जाएगा। अब आगे सुनते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स को लगभग 15 मिनट के लिए गर्म पानी में सोक करने रख दीजिए। 15 मिनट के बाद हमें छुरी की मदद से
उन ड्राई फ्रूट्स के पतले टुकड़े करने हैं। माय गॉड, इतनी सारी तैयारी करके मैं तो थक गई भाई साहब। आई नीड अ ब्रेक।

आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम पेठा हलवा बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले मोटे बेस वाली एक कढ़ाई लीजिए। उस कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर गैस को ऑन कीजिए। फिर उसमें डालिए कद्दूकस किया हुआ या बारीक टुकड़े किया हुआ पेठा। हमें इसे लो फ्लेम पर पकाना है। लगभग 10 मिनट तक इसे चलाते रहिए, अदरवाइज ये एक तरफ से ही पक जाएगा। 10-15 मिनट के बाद उस पेठे का कच्चापन दूर होगा। तब हम उसमें डालेंगे चीनी, केसर और ढेर सारा प्यार। फिर इस मिश्रण को मिक्स करते हुए अच्छे से पकाएं। चीनी पिघलने के बाद ये मिश्रण थोड़ा ढीला हो जाएगा। पेठा का मॉइस्चर और चीनी का गीलापन सूखना चाहिए और ये मिश्रण गाढ़ा बनना चाहिए। इस स्टेज तक पहुंचने के लिए हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। लगभग 8 से 10 मिनट के बाद ये मिश्रण सूख जाएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे खोया यानी मावा और थोड़ी इलायची पाउडर। फिर सारे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। लगभग 3-4 मिनट के बाद आप गैस को बंद कर दीजिए। अब हमें इसे डेकोरेट करना है। इसके लिए हम लेंगे एक सुंदर सा बर्तन और उस बर्तन में इस गर्मा गर्म पेठा के हलवा को ट्रांसफर करेंगे। आप चाहे तो रोज पेटल्स से इसे डेकोरेट कर सकते हैं या फिर काजू और बादाम के पतले टुकड़ों से फूलों वाला डिजाइन भी बना सकते हैं। फिर सबसे पहले भगवान को इस पेठा के हलवा का भोग लगा ही दीजिए। ऐसा करने से इसकी सात्विकता बढ़ेगी। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और भी बातें होंगी।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस पेठा हलवा की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है ट्रेडिशनल पेठा का हलवा। सुनहरी सी एक रेसिपी जो है एकदम ट्रेडिशनल। पेठे का हलवा मींस यम्मी और न्यूट्रिशनल। ऑडियंस जी, किचन में कीजिए एंट्री और दिखाइए अपना जलवा। ऐसा करने के लिए आप जरूर बनाइए पेठे का हलवा। पेठे को कहते हैं आयुर्वेद में औषधि। इलायची पाउडर डालकर इसे बनाया सुगंधी। पेठा घी और शक्कर का सुनहरा ये मिलाप। और साथ में सुनिए नए पुराने कुछ म्यूजिकल आलाप। खाने और गाने का ये मेल मतलब सेहत और मनोरंजन का सुंदर सा खेल। खाना और गाना यही है हमारे इस शो की जान। पारंपरिक खाना खाकर बढ़ाइए अपने देश का मान। सोमवार और शुक्रवार को रहूंगी मैं हाजिर, क्योंकि स्वाद का जायका शो के हम सब है मुसाफिर। मैं हूं आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। भाई, पेठे का हलवा हमने बना लिया है, अब बारी आती है हमारी अगली रेसिपी की। एक खट्टा मीठा फल है जिसका आकार लगभग बेर जितना या उससे थोड़ा सा छोटा होता है। इसका पौधा कांटेदार और झाड़ियों वाला होता है। जब ये फल कच्चा होता है तब हरे रंग का दिखता है। पूरी तरह से पकने के बाद ये काले रंग का दिखता है। विटामिन सी से भरा ये फल एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। हमारे किसान भाई इसे अक्सर अपने खेतों की मेंढों पर एज अ फेंस लगाते हैं। ऐसा करने से जंगली जानवर खेतों में नहीं घुसते। यहां पर मैं बात कर रही हूं करौंदे की। मराठी में इसे करवंद के नाम से जाना जाता है। इस करवंद से अचार, चटनी, जैम और जेली बनाई जाती है। आज के शो में हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए इस करौंदा मींस करवंद की चटनी को हम बनाने वाले हैं और इसका टेस्ट एकदम चटपटा है। इस चटनी को आप सिंपल दाल चावल या सीधे रोटी पर लगाकर एज अ कंफर्ट फूड एंजॉय कर सकते हैं। करौंदे की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: हरा करौंदा या करवंद 1/2 किलो, हरी मिर्ची के टुकड़े 3-4, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसकी मात्रा बढ़ा दीजिए, ब्राउन गुड़ या चीनी 1 कटोरी, हल्दी 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, बड़ी सौंफ पाउडर 1 चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच, राई मींस सरसों 1/2 चम्मच, हींग 1 चुटकी, कटा हुआ हरा धनिया 2 चम्मच, मेथी दाना पाउडर 1/2 चम्मच, तेल 4 चम्मच अप्रोक्सीमेटली, नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ पर मैं लगभग 1 चम्मच नमक ले रही हूँ। सबसे पहले आप एक साफ बर्तन में पानी लीजिए, उसे अप्रोक्सीमेटली 2 चम्मच नमक को मिक्स करके साइड में रखिए। जब नमक घुल जाए तब उस सॉल्टी वाटर में सारे करौंदे लगभग 15 मिनट तक भिगोकर रख दीजिए। वैसे ये मेथड आप बाकी फल और सब्जियों के लिए भी यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से उन फल या सब्जियों में से कीड़े वगैरह निकल जाएंगे। अब हम आगे की रेसिपी को सुनते हैं। फिर उन करौंदा मींस करवंद को एक कपड़े से पोंछ लीजिए। उसके बाद हरे करौंदे के हम 4 टुकड़े करने वाले हैं और अंदर का बीज हटाने वाले हैं। उसके बाद आप लीजिए एक मोटे बेस वाली कढ़ाई। उस कढ़ाई में डालिए थोड़ा सा तेल। इस तेल को हम धीमी आंच पर गरम करेंगे। अगर आप नारियल का तेल यूज करें तो इसका फ्लेवर एनहांस होगा। फिर उसमें वघार या तड़का लगाना है। उसके लिए सबसे पहले उस तेल में डालिए सरसों। सरसों के बाद हम डालेंगे जीरा।
ये सीक्वेंस आप फॉलो करते रहिए, पहले सरसों फिर जीरा। सरसों और जीरा को चटकने दीजिए। यहां पर हम ले रहे हैं एक ब्रेक, ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब तड़के में डालिए खुशबूदार हींग। हींग डालने के बाद नंबर आता है मेथी पाउडर और हरी मिर्ची का। हरी मिर्ची को अच्छे से फ्राई कीजिए। आप अपनी पसंद के मुताबिक हरी मिर्ची की मात्रा को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं। अब बारी आती है हल्दी पाउडर और नमक की। फिर हम उस मिश्रण में ऐड करेंगे सौंफ पाउडर और धनिया पाउडर। उसके बाद हम डालेंगे करौंदे मींस करवंद के टुकड़े। इस मिश्रण को एक चम्मच की मदद से आप अच्छे से मिक्स कीजिए। अब बारी आती है थोड़ी सी मिठास की मींस अब हम शक्कर को ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, अगर आप चाहे तो शक्कर के बदले ब्राउन गुड़ को यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से ये चटनी ज्यादा पौष्टिक बनेगी। फिर इस मिश्रण पर एक ढक्कन रखिए। इसे लो फ्लेम पर हम लगभग 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ऐसा करने से गुड़ या शक्कर अच्छे से मेल्ट होगा। 5 मिनट होने के बाद इसमें लगभग 1 या 1.5 कप पानी ऐड कीजिए। फिर उस पे ढक्कन लगाकर लगभग 15 मिनट के लिए उसे धीमी आंच पर पकाना है। 15 मिनट के बाद आप गैस को बंद कर दीजिए और पकी हुई चटनी को उसी तरह ढक्कन लगाकर छोड़ दीजिए। ऐसा करने से चटनी का टेक्सचर और गाढ़ा होगा। जब ये चटनी पूरी तरह से ठंडी हो जाए तब इसे कांच के बर्तन में ट्रांसफर कीजिए। उसका रीजन तो आपको पता ही है, खट्टी चीजों को धातु के बर्तन में रखने से उस धातु की मींस मेटल की क्वालिटी खराब हो जाती है, इसलिए बी केयरफुल। अब हम इसे थोड़ा डेकोरेट करते हैं। इस करौंदा मींस करवंद की चटनी को डेकोरेट करने आप इस पर छिड़किए बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अगर आपको तीखा खाना कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है तो उस पर मींस उस चटनी के मिश्रण पर आप रखिए एक हरी मिर्ची। दैट्स इट। इस प्रकार हमारी खट्टी मीठी टेस्ट वाली करौंदा या करवंद की चटनी हो गई है तैयार और इसे टेस्ट करने घर के लोग कब से बैठे हैं एकदम बेकरार। तो जनाब, इस गर्मी के सीजन को थोड़ा आसान बनाने के लिए आप करौंदा की चटनी को जरूर बनाइए और इसे अपनों के साथ मिल बांटकर मजे से खाइए। आपको हमारी आज की रेसिपीज कैसी लगी ये हमें जरूर बताइए। ताजा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। वैसे ये करौंदा या करवंद की चटनी को आप एयर टाइट डब्बे में भरकर 3-4 दिनों तक फ्रिज में स्टोर कर ही सकते हैं। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। वैसे ये करौंदा चटनी इतनी टेस्टी होती है कि एकदम फटाफट बनती है और गटागट खाकर खत्म भी हो जाती है। इस करौंदा चटनी की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है अपनी सी करौंदा की चटनी। खेतों की मेंढों पर पंछियों का घरौंदा, खट्टी मीठी चटनी बनाने आप लाए करौंदा। झाड़ियों में मिलने वाला अनोखा सा ये फल, इसके सेवन से मिलेगा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी का हल। करौंदे से बनाई मजेदार चटनी, खट्टे मीठे टेस्ट से लगती बिल्कुल अपनी। खट्टे और मीठे स्वाद का ये संगम, मुश्किल से रखा मैंने अपने मन पर संयम। करौंदा का मतलब मराठी में करवंद, खाओ देसी खाना और सेहत बनाओ बुलंद। पारंपरिक खाने को क्यों करे नजरअंदाज, इसे खाकर करे नए ट्रेंड का आगाज। खट्टे मीठे फल में डाला मिर्ची मसाला, एक बार खाकर तो देखिए आधी टेंशन का शला। संस्कृति और स्वाद का स्वादिष्ट मेल मींस सेहत और मनोरंजन का सुपर हिट खेल। मिलती रहूंगी आपसे हर सोमवार और शुक्रवार, आपसे होने वाली हर मुलाकात करती मुझे बेकरार। आचार्य 90 FM है योर ओन रेडियो, बातें होंगी आपसे फ्रॉम अवर स्टूडियो।
स्टूडियो से रेडियो तक होने वाला सफर, मतलब सेहत और म्यूजिक का जुगलबंदी ऑफर। दिल से करती हूँ आपका धन्यवाद, अच्छा लगता है मुझे आपसे करना संवाद। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। स्वाद का जायका इस शो के आज के एपिसोड में हमने बनाया पेठे का हलवा, शुरुआत में ही मीठा बना दिया। कुष्मांड के नाम से भी जाने जाने वाली इस सुपर कूल सब्जी में शक्कर, देसी घी और ड्राई फ्रूट्स डालकर हमने ये स्वीट डिश बनाई। इस काशी हलवा के नाम से भी फेमस रेसिपी को हमने एकदम शिद्दत से पकाया। इस प्रकार हमने एकदम मधुर अंदाज में अपने प्यारे ऑडियंस से दोस्ती निभाई। फिर बारी आई करौंदे की चटनी की। ये खट्टी मीठी चटनी है, मराठी में इसे करवंदा की चटनी के नाम से जाना जाता है। कच्चा करौंदा, चीनी और कुछ मसालों को इस्तेमाल करके हमने ये ट्रेडिशनल रेसिपी बनाई। सिंपल दाल चावल या फिर गरम रोटी के साथ इसे खाना मींस कंफर्ट फूड वाला मूड निभाने जैसा है। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें जरूर बताइए, और अगर आपको अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना है तो वो भी हमें बताइए। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। लेकिन लेकिन लेकिन उसके पहले आचार्य 90 FM को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसा करने से हमारी दोस्ती एकदम पक्की हो जाएगी, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि जल्दी ही रिमझिम बारिश का मौसम आएगा और लजीज खाने के साथ सुहाने गाने गुनगुनाने का आपका मन जरूर करेगा। इसलिए आचार्य 90 FM से जुड़े रहना बेहद जरूरी है। अर्ज किया है, एक खत लिखा था बादलों को, भीगा भीगा जवाब आया अभी। ठंडी छाव लेकर आए बादल, लेकिन आपकी याद ने ऑडियंस जी हमें भिगो दिया तभी। सोमवार और शुक्रवार का मनचाहा इंतजार, मतलब धूप में

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

आज हरी 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं हमारे प्यारे ऑडियंस? अरे भाई, बारिश के मौसम में इंद्रधनुष को देखा कि नहीं? वैसे आप सबकी मौजूदगी से हमारे स्वाद का जायका शो पर सतरंगी खुशियों का माहौल सा ऑलरेडी छा चुका है। अर्ज किया है बारिश का मौसम और ऑडियंस का साथ, मतलब जैसे आसमान में इंद्रधनुष और अपनेपन की बात। खुशियों का पैगाम लेकर आया अगस्त। मनोरंजन के लिए आचार्य 90 FM का परिवार मींस आप ही हो समस्त। स्वाद का जायका की होस्ट भारतीय सीमा टेंशन की स्पीड को कर देगी धीमा। अच्छा खाना खाकर हो जाइए खुश, बेकार वाले टेंशन को दूर कीजिए खुश। भारत की तरक्की से खुश हुआ आसमान, आचार्य 90 FM मतलब दोस्ती की पहचान। हाल ही में मारा हमने शानदार फोर, हर कोई मांगे आचार्य 90 FM मोर। अब ना होगा मुमकिन हमें करना इग्नोर, नाउ वी आर बेटर देन नेवर बिफोर। आचार्य 90 FM मतलब परफेक्ट एंटरटेनमेंट, खाने और गाने की यहाँ पर एंजॉयमेंट। पहली रेसिपी का नाम है शीर खुरमा, खाकर इसे अब खुश होंगे हमारे सूरमा। ईद की बधाई का लेकर संदेश, पधारे हैं और भी त्योहार लेकर खुशियों का आदेश। आचार्य 90 FM के आप संग है खास ताल्लुकात, टेस्टी शीर खुरमा से होगी इस शो की शुरुआत। तो जनाब, हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी का नाम है शीर खुरमा। भाई, ईद को मनाने के लिए शीर खुरमा बनाया जाता है। हैदराबादी और लखनवी खाद्य संस्कृति में शीर खुरमा का एक अलग और खास स्थान है। ये एक ट्रेडिशनल और बेहद टेस्टी मिठाई है। इसे मेनली दूध, सेवई और खजूर इस्तेमाल करके बनाया जाता है। शीर मींस दूध और खुरमा मींस खजूर होता है और इन दोनों को मिलाकर बनता है शीर खुरमा। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी? आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। चलिए अब हम इस ट्रेडिशनल शीर खुरमा को बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। शीर खुरमा बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: फुल क्रीम दूध 1.5 लीटर, बारीक सेवई 50 से 60 ग्राम, इसे हाथ से तोड़कर छोटा करना है, खजूर 5 या 6, इसे रात भर पानी में भिगोकर पतला और लंबा काटना है, बादाम 10-12, इसे भी रात भर पानी में भिगोकर छिलका हटाना है, फिर लंबे टुकड़ों में काटना है, काजू 10-12 बारीक कटे हुए, फिर हमें चाहिए पिस्ता 10-12 बारीक कटे हुए, चिरौंजी मींस चारोली 2 बड़े चम्मच, किशमिश 1 बड़ा चम्मच, चीनी 1/2 कप या स्वाद के अनुसार, देसी घी 3-4 बड़े चम्मच, हरी इलायची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, केसर के धागे 10 से 12, इन्हें लगभग 1 चम्मच गर्म दूध में भिगोकर रखना है, केवड़ा जल या गुलाब जल 1 छोटा चम्मच, ये ऑप्शनल है, और मेन इंग्रेडिएंट ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपकी मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली है। अब हम शीर खुरमा बनाने की रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें दूध को उबालकर गाढ़ा करना है। इसके लिए हमें चाहिए मोटे बेस वाली एक कढ़ाई। उस कढ़ाई में हमें दूध को गर्म करना है। जैसे ही उस दूध में उबाल आए, आप गैस की आंच को धीमा कर देंगे। इसे घटाकर हमें 1/3 करना है। लगभग 1/2 घंटे तक हमें दूध को पकाना है। इस दौरान करछी की मदद से हम दूध को चलाते रहेंगे। ऐसा करने से मलाई उस बर्तन के किनारों पर जमा नहीं होगी। उफ, इतना सारा काम करके मैं तो थक गई भाई साहब।
आई नीड अ ब्रेक। तब तक आप एक गाना सुन लीजिए।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम शीर खुरमा बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मोटे बेस वाला एक पैन। उस पैन में लगभग एक चम्मच घी डालकर हमें उसे गर्म करना है। फिर उसमें कटे हुए बादाम, काजू, पिस्ता, चारोली और किशमिश डालकर हमें भूनना है। लगभग 2-3 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर भून लेंगे। जब ये हल्के सुनहरे रंग के हो जाए तब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल कर रखेंगे। फिर उसी पैन में बचा हुआ घी डालकर हम भूनेंगे बारीक सेवई। इसे भी लगभग 2-3 मिनट तक हमें भून लेना है। मींस धीमी आंच पर जब इसकी खुशबू आए तब तक। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हमने दूध को उबालकर गाढ़ा कर लिया था। अब हम उसमें भुनी हुई सेवइयां और खजूर ऐड करेंगे। इसे लगभग 5-7 मिनट तक पकाना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े और खुशबूदार इलायची पाउडर। भाई वाह, इसे लगभग 5 मिनट तक चलाते हुए धीमी आंच पर पकाना है। गैस को बंद कर दीजिए। इस प्रकार हमारा स्वादिष्ट शीर खुरमा अब हो गया है तैयार और इसे टेस्ट करने हम हो रहे हैं एकदम बेकरार। तो भाई अब हमें चाहिए कांच की एक सुंदर सी कटोरी। उस कटोरी में बड़ी नजाकत से हम डालेंगे शीर खुरमा। क्या बात, दूध में से झलकती हुई सेवइयां और साथ में ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि सावन के मौसम में खिली खिली सी धूप। अब अपनों के साथ मिल बांट कर इस शीर खुरमा का लुफ्त एकदम तसल्ली से उठाइए। ऐसा करने से इस शीर खुरमा का टेस्ट और ज्यादा अच्छा लगता है। यकीन ना आए तो एक बार आप इसे ट्राई तो कीजिए जनाब। और इसके साथ आप सुनिए हमारे आचार्य 90 FM का अगला वाला गाना।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस लजीज शीर खुरमा की खिदमत में पेश है एक कविता। कविता का नाम है उम्मीदों वाली ईद। शीर खुरमा खाकर मनाइए ईद, अपनापन जताने की हमें है उम्मीद। ईद पर घर पे बनी मीठी सेवैया, हम ही हैं खुद अपने लाइफ के खेवैया। सेवैया में मिलाइए ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स, त्योहारों में छिपे हैं अपने पन के रूट्स। केसर से पाया इस रेसिपी ने रंग सुनहरा, केसर से पाया इस रेसिपी ने रंग सुनहरा। खिलाकर शीर खुरमा दोस्ती को कीजिए गहरा। खाना खिलाकर जब गहरी होगी दोस्ती, तब कभी कभी होगी हल्की फुल्की मस्ती। अपनापन दिखाने का त्योहार वाला टाइम। सब्सक्राइब कीजिए आचार्य 90 एफएम, वंस इन अ लाइफ टाइम। भाई, त्योहारों को मनाना और लजीज खाना खाकर अपनापन जताना, ये सिलसिला तो अब चलता ही रहेगा। और यही अपनापन जताने के लिए आपको स्वाद का जायका से जुड़े रहना बेहद जरूरी है। इसलिए हमारे आचार्य 90 एफएम चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली रेसिपी की ओर। हमारे महाराष्ट्र, कोंकण और तटीय क्षेत्रों में श्रावण मास की पूर्णिमा को नारली पूर्णिमा मीन्स नारियल पूर्णिमा इस पर्व के नाम से जाना जाता है। इस दिन मछुआरा समुदाय समुद्र देवता की पूजा करके उन्हें नारियल अर्पित करता है और मॉनसून के बाद सुरक्षित तरीके से मछली पकड़ने के लिए नए सत्र की शुरुआत करता है। समुद्र देवता को शांत रहने और आपदाओं से रक्षा करने की प्रार्थना इस दौरान की जाती है। रक्षाबंधन के साथ ही मनाया जाने वाला ये पर्व भाई बहन के प्रेम को भी दर्शाता है। इस दौरान पारंपरिक गीत, नृत्य और पकवानों का आनंद लिया जाता है। इन पकवानों में विशेषकर नारियल वाले चावल को बनाया और खिलाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन बनने वाला ये नारली भात मीन्स नारियल वाले मीठे चावल, ताजा नारियल, गुड़, चीनी और सुगंधित मसालों से बनता है। इसे बनाना बेहद सरल और आसान है। भाई, जरूरी नहीं कि आप इसे सिर्फ नारियल पूर्णिमा के दिन ही बनाएं। किसी और जश्न के दौरान भी आप इस ट्रेडिशनल नारियल के चावल की यमी रेसिपी को जरूर बना सकते हैं। ये रेसिपी खास तौर पर अपनी बनावट और स्वाद के लिए जानी जाती है। तो भाई, शुभ काम में देरी क्यों? हमारे आज के इस त्योहार स्पेशल एपिसोड में हम नारियल के चावल मीन्स नारली भात को बना ही देते हैं। नारली भात बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: बासमती चावल एक कटोरी, ताजा नारियल एक, नमक आधा चम्मच या स्वाद के अनुसार, ब्राउन गुड़ पौना कटोरी, केसर के धागे 10-12, लौंग 9 या 10, देसी घी 4 बड़े चम्मच, पानी 2 कटोरी, मिक्स ड्राई फ्रूट्स 1/2 कटोरी। मिक्स ड्राई फ्रूट्स मीन्स काजू, बादाम, किशमिश, चिरौंजी मीन्स चारोड़ी वगैरह। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, यहाँ मिक्स ड्राई फ्रूट्स के बदले मिल्क मसाला को इस्तेमाल मत कीजिए, अदरवाइज इस नारली भात का लुक्स थोड़ा सा बदल जाएगा। इस बात का आप खास ध्यान रखिए। रेसिपी को शुरू करने से पहले हमें ताजा नारियल को कद्दूकस कर लेना है। हमें लगभग 1/2 कटोरी भर के ये नारियल चाहिए। फिर चावल को अच्छे से धो लेना है। चावल को पानी से धोने के बाद उसका पानी हमें हटाना है। उसके बाद लगभग 45 मिनट के लिए इसे अलग से रख दीजिए।
इस तरह से भिगो कर रखे हुए चावल पकने के बाद बड़े और खिले खिले से दिखते हैं और इस वजह से हमारा प्रेजेंटेशन थोड़ा प्रोफेशनल टाइप हो जाएगा। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक, ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। ब्रेक पर जाने से पहले हम नारळी भात बनाने की तैयारी कर रहे थे। अब हमें ब्राउन गुड़ को भी कद्दूकस कर लेना है। फिर एक पैन में हम गरम करेंगे देसी घी। उस देसी घी को हमें लो फ्लेम पर गरम करना है। अब हम उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स को भून लेंगे। लगभग 3-4 मिनट तक हम इसे भूनेंगे। फिर इन ड्राई फ्रूट्स को हम एक प्लेट में निकाल देंगे। उसके बाद हम लेंगे मोटे बेस वाली एक कढ़ाई। उसमें धीमी आंच पर हम गरम करेंगे 3 बड़े चम्मच देसी घी। जब वो घी गरम हो जाए तब हम उसमें लौंग डालेंगे। इसे 3-4 मिनट तक लो फ्लेम पर हमें भूनना है। जब लौंग फूल जाएगी तब उसमें से खुशबू आने लगेगी। फिर हम उसमें ऐड करेंगे भिगो कर रखे हुए बासमती चावल और थोड़ा सा नमक भी। इसे एक बड़े चम्मच की मदद से हमें मिक्स करना है। उसके बाद उन चावलों में हम डालेंगे गुनगुना पानी और केसर के धागे। फिर हम गैस की फ्लेम को तेज करेंगे। जैसे ही चावल में तेज उबाल आएगा तब हम गैस की फ्लेम को धीमा करेंगे। थोड़ी देर के लिए उन चावलों के ऊपर हम ढक्कन रखकर इसे पकाएंगे। थोड़ी देर के बाद चावल सारा पानी सोखकर पूरी तरह से पक जाएंगे। इस बीच एक छोटे पैन में गुड़ और नारियल डालकर उसे मिक्स कीजिए। हमें इसे धीमी आंच पर पकाना है। थोड़ी देर बाद गुड़ पिघलना शुरू होगा। आहा, क्या बात! नारियल और गुड़ के पकने की खुशबू से सारा घर महक उठेगा और घर के लोगों के टेस्ट बर्ड्स अब एक्टिव मोड की तरफ प्रस्थान करने लगेंगे। मींस सबको उत्सुकता होगी कि भाई हो क्या रहा है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो भाई, पके हुए गुड़ और नारियल के इस मिश्रण को हम चावल में मिक्स करेंगे। इस दौरान आप ध्यान रखें कि चावल के दाने टूटे नहीं। एकदम हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। आप चाहे तो इसे मिक्स करने के लिए काटा चम्मच को यूज कर सकते हैं। हम इस मिश्रण को ढककर धीमी आंच पर लगभग 4-5 मिनट तक पकाएंगे। जनाब जरा रुकिए तो, मेरी बात को सुनिए तो, इतनी भी क्या बेकरारी भाई, अभी डेकोरेशन वाला पार्ट बाकी है। अब हम लेंगे एक सुंदर सी प्लेट। उस प्लेट में हम डालेंगे तैयार नारियल का मीठा चावल। इसे सजाने के लिए उसके ऊपर हम भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को फैला देंगे। हमारे महाराष्ट्र का नारियल चावल मींस नारळी भात त्योहारों के व्यंजन के रूप में अब हो गया है तैयार और इसे टेस्ट करने हमारे प्यारे ऑडियंस जी हैं एकदम बेकरार। तो भाई, देर किस बात की, आप नीचे जमीन पर बैठ जाइए। अपने साफ और धुले हाथों से इस गर्मा गर्म नारियल वाले चावल का एक निवाला उठाइए। अपनी उंगलियों से उस चावल के टेम्परेचर और टेक्सचर को फील कीजिए। फिर एकदम नजाकत से, एकदम आराम से उस निवाले को अपने मुंह में डालिए। उस चावल का अरोमा और उसका टेस्ट आपके चेहरे पर मिलियन डॉलर वाली स्माइल को जरूर लाएगा। यकीन ना आए तो इस नारळी भात को आप एक बार बनाकर तो देखिए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इसे बनाकर और अपनों के साथ मिल बांट कर खाने से आप एकदम खुश हो जाएंगे। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस नारळी भात की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है नारियल वाले मीठे चावल। रक्षाबंधन के त्योहार पर मिठाई में डाला नारियल। त्योहार को जरूर मनाएंगे,
शैतान भाई और बहन अड़ियल। आया पूर्णिमा का पर्व ये पावन, खुशियों को मनाने बनाया हमने मीठा नारियल चावल। नारियल का साथ देने हमने डाला गुड़, इसकी मिठास ऐसी कि सुधार देगा आपका मूड। स्वाद का जायका ऐड करने डाली हमने लौंग। आचार्य 90 FM पर आप जरूर सुनिए सॉन्ग। मीठा नारियल चावल मींस स्वाद के संग सेहत। सिर्फ हेल्दी खाना खाने की अब डाल ही लीजिए आदत। सावन का महीना लेकर आया खुशियों की आहट। स्वाद का जायका शो मतलब लजीज खाने की चाहत। अब हम सुनते हैं एक क्विक रीकैप। आज के इस एपिसोड में सबसे पहले हमने बनाई एक खास रेसिपी। शीर खुरमा नाम की इस रेसिपी में बारीक सेवई, दूध, खजूर और मिठास भरी शक्कर को देसी घी के साथ मिलाकर हमने ईद को सेलिब्रेट किया। किया कि नहीं ऑडियंस जी? जी बिल्कुल किया। इस प्यारी सी रेसिपी में ड्राई फ्रूट्स मिलाकर हमने थोड़ी सी सजावट भी की। उसके बाद हमने नारियल पूर्णिमा का पावन पर्व भी शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया। ताजा नारियल, बासमती चावल, गुड़ और लौंग को घी का तड़का लगाकर हमने एक खास महाराष्ट्रीयन रेसिपी बनाई। नारळी भात नाम से फेमस रेसिपी को रक्षाबंधन स्पेशल सेलिब्रेशन के तौर पर हमने आचार्य 90 FM के हमारे खास ऑडियंस के लिए बनाया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपीज जरूर पसंद आई होंगी। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें बताइए, और अगर आपको अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना हो तो वो भी हमें जरूर बताइए। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। लेकिन पहले हमारे आचार्य 90 FM चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का। वापस मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं एकदम पक्का वादा। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। RJ भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

0: मेंटल
1: मेंटल हेल्थ अगेन हमें आइसोलेशन में आई फील डिस्कस नहीं करना चाहिए। जब हम हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ में हेल्थ की अगर WHO के डेफिनेशन को हम देखें तो इट टॉक्स अबाउट कि अ हेल्दी पर्सन में सिर्फ ऐसा नहीं है कि डिजीज़ का एब्सेंस है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज, इट इज़ ऑल्सो अबाउट कम्प्लीट स्टेट ऑफ वेलबींग, जहाँ पर हमारा साइकोलॉजिकल हेल्थ, हमारा फिजिकल हेल्थ सब काम पे आता है। तो मेंटल हेल्थ अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, लोग जो है उसे कंफ्यूज करते हैं मेंटल इलनेस के साथ। सो नॉट एवरीवन इज मेंटली इल, बट एवरीवन हैज अ मेंटल हेल्थ दैट दे नीड टू टेक केयर ऑफ, जस्ट लाइक दे टेक केयर ऑफ देयर फिजिकल हेल्थ। इट्स अबाउट देयर इमोशंस, देयर फीलिंग्स, देयर पर्सनालिटी। सो या, दैट्स अबाउट इट।
0: सो आजकल हम देख रहे हैं कि स्पेसिफिकली अगर बात किया जाए यंग एडल्ट्स के बारे में, व्हाट वुड बी योर एडवाइस
1: अगेन हमें बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा कि व्हाट डू वी मीन बाय सुसाइडल थॉट्स, उसके रूट्स क्या है एंड क्या हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन। देन हाउ कैन वी प्रिवेंट इट। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय सुसाइडल थॉट्स। जब एक व्यक्ति को, जब एक व्यक्ति इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, भले वो बच्चा हो, टीनेजर हो या ओल्डर कोई हो, जब उन्हें ऐसा फील होने लगता है कि देयर इज़ नो पॉइंट इन स्टेइंग हियर, देयर इज़ नथिंग फॉर मी टू लुक फॉरवर्ड टू, और काफ़ी ज़्यादा पेन है, तो इस पेन को ख़त्म करने का जो एकमात्र तरीका है, इट इज़ टू एंड दिस लाइफ। तो अगर ये लाइफ ही नहीं होगी तो ऐसा कोई पेन भी नहीं होगा। दिस इज़ हाउ, दिस इज़ व्हाट सुसाइड इज। एंड देन हाउ दे कैन प्रिवेंट इट इज, देयर आर डिफरेंट methods to do that, but जब हम suicide prevention के बारे में बात करते हैं, I just want to take a moment and highlight कि जो suicide prevention का responsibility है, ये अकेले एक बच्चे के ऊपर या अकेले एक individual के ऊपर नहीं आना चाहिए, जो usually आता है। क्योंकि हम suicide prevention के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि it is up to that individual or their therapist, but I feel that prevention is a collective responsibility. When I see collective responsibility, I mean ki everyone has a role. A teacher has a role, a parent has a role, classmates or peer has a role. Larger scale mein dekhe to school as an institution ya office as an institution has a role. Media has a role ki wo kaise depict kar rahi hai, kaise present kar rahi hai suicidal cases, kya usko wo sensation bana rahi hai ya sensitively handle kar rahi hai. Then a very big role of policy makers, government, state. Do they have that enough resources जहाँ पे prevention के लिए, मतलब वो condition है जहाँ पे वो last stage पर पहुँचेगी ना, तो prevention के लिए अकेले एक बच्चे पे वो नहीं आना चाहिए कि how they should do it. It should be a collective effort because it's a collective responsibility.
0: I wanted to ask ki, what do you think, what is the very general problem that every teenager goes through which might lead to take this big step in their life? It can be anything, but what do you think with your experience is the general problem a student or a teenager go through?
1: Okay, since you're asking about just general problems, again a disclaimer that whatever I will share here right now is based on my readings, my personal experience and my discussion with teenagers. So whatever I will share, वो ज़रूरी नहीं कि सबको इक्वली वैसा अप्लाई हो, सबके केसेस अलग अलग हो सकते हैं, बट जो रेकरेंट चीज़ें हैं, आई माइट इवन मिस आउट ऑन फ्यू, बट जो डेटा भी हमें बार बार बताती है, दैट इज ए वुड बी लोनलीनेस। लॉट ऑफ टीनेजर्स और लॉट ऑफ यंग एडल्ट्स टुडे फील लोनली despite having lot of people around them, and it's not like they are not trying to do anything to be feel less lonely. Agar 2023 mein WHO ne to declare kar diya tha ki it's a public threat, loneliness is a public threat, but aisa nahi hai ki nahi try kar rahe, the आयरनी देखें तो यही जनरेशन है जो एक्सट्रीमली ट्राई कर रही है टू फील लेस लोनली. देयर इज प्रेशर टू एंजॉय, देयर इज प्रेशर टू हैव फन, प्रेशर टू मेक कनेक्शंस. इट्स द सेम थिंग लाइक इफ वी वांट टू टेक एन एग्जांपल, वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ डेटिंग एप्स. अ लॉट ऑफ यंग अडल्ट्स, अ लॉट ऑफ टीनएजर्स, अ लॉट ऑफ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स आर यूजिंग डेटिंग एप्स एंड आई एम इन नो पोजिशन टू से कि वो यूज करना गलत है या नहीं है. इट्स अ पर्सनल चॉइस, इट इज हेल्पिंग पीपल फाइंड कनेक्शन, देन वाई नॉट. बट देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डेटिंग बर्नआउट जो लोग फील कर रहे हैं, विच इज वेरी सिमिलर टू वर्क प्लेस बर्नआउट. और वर्क प्लेस बर्नआउट में भी वही इमोशनल एग्जॉशन होता है सब कुछ, लाइक एवरीथिंग इज सेम, इज जस्ट दैट द डिफरेंस इज यहाँ पे हम जो स्वाइप करते हैं डेटिंग ऐप में, द जॉब हियर इज टू फाइंड कनेक्शन. Lot of exhaustion that these people, not this generation, feel, sorry for the term, our generation feel to make a meaningful connection. So there's a lot of sense of loneliness, and then apart from this, there's also constant conflict in relationships. And when I say relationship, it is beyond two partners who are dating, it goes to the families as well. A lot of the time, a teenager simply feels ki, why are they not listening to me? Yeah, why is it so difficult for them to understand what I'm telling them? On the other hand, parents are like, we are trying to protect our children, and whatever we are saying is because of their own betterment. So there's a lot of conflict, there's a lot of communication gap, and this communication gap is also, there's also emotional gap ki hum nahi samajh pa rahe ki what the other person is feeling. So that is P. I think I pointed out loneliness and then family conflict. And there's also external pressure, like societal pressure about performance, about marks. Marks se related kafi zyada news mein aa jata hai about the cases, but it is only just a tip of the iceberg. So agar hum data ki baat kare to only 1 point something people are only like. And also one more thing, ki there is not one particular cause to suicide. Agar again media mein bhi represent karte time kafi log na narrow down kar dete hain. Agar aapko याद रहेगा न्यूज़ में जो आया था अबाउट वन फैमिली, अ टीनेजर जंप फ्रॉम द क्लिफ एंड देन बोथ द पेरेंट्स आल्सो फॉलोड, एंड मीडिया में उसने उसको सेंसेशन बना दिया गया था जहाँ पे एक पर्टिकुलर रीज़न के साथ उसको कनेक्ट कर दिया गया. बट इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट वन पर्टिकुलर रीज़न, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ सो मेनी अदर स्ट्रेसर्स दैट अ पर्सन इज फेसिंग.
2: सो मैम, आई डू हैव अ क्वेश्चन अबाउट, लाइक आपने बोले करके फैमिली के बॉन्ड की वजह से भी जो पर्सन है वो सफ़र करता है. सो आई डू वांट टू नो करके, अगर फैमिली के साथ बॉन्ड अच्छा नहीं है, ऑन अ पर्सनल नोट आई थिंक आइदर द पर्सन चूज अनदर कैरेक्टर टू लिव, लाइक वो उन्हें हाई पे भी लेके जा सकता है, एंड ऑन अ नेगेटिव नोट वो पर्सन एक्सट्रीम डिप्रेशन में जा सकता है. आई डू वांट टू नो योर थॉट्स ऑन दैट.
1: Understand the question better. You said that the conflict between parents.
2: Should I repeat,
1: ma'am? Yeah.
2: Like, ma'am, अगर एक बच्चे का अपने dad के साथ में अच्छा bond नहीं है, so वो perspective से वो बच्चा either एक another personality choose करके एक high पे जा सकता है.
1: Another personality would be?
2: Another personality, ma'am, like give on the emotion, like emotions को पीछे छोड़ के. ये इफेक्ट करता है क्या मेंटल हेल्थ को?
1: यस, इफेक्ट करता है, बट आई थिंक आप दो चीज कुछ कंपेयर कर रहे थे. आई विल वांट टू कंप्लीट.
2: इफेक्ट करना इन द सेंस, अब ये जैसे बच्चा अगर अपने मॉम डैड से थोड़ा दूर रह रहा है, सो लाइक वो एक इमोशनल अवेलेबिलिटी कम हो रहा है उसके पास, सो ही इज जस्ट ट्राइंग टू रिप्लेस द थिंग्स विद सम अदर. स्पोर्ट्स हो गया, लाइक उनके उसकी पर्सनल लाइफ हो गई, सो डज इट हेल्प?
1: कॉल्ड एज कोपिंग मैकेनिज्म, जो हर इंडिविजुअल का अलग अलग होता है. नाउ इन दिस सिचुएशन, कहीं पे सपोज अगर हम बात कर रहे हैं कि फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, अगर फैमिली इन जनरल टॉक्सिक है कि वहाँ पर रह के हमारा एनर्जी और ड्रेन हो रहा है, हम खुद से और एक्सप्लोर चीज़ें नहीं कर पा रहे, खुद को और एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, देन फॉर समवन इफ दे आर दे हैव गुड कोपिंग मैकेनिज्म, लाइक इफ दे आर एज यू सेड की स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, किसी आर्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इट डज हेल्प देम. सो या
0: सो मैं
1: फॉर ओल्डर पीपल देन द यंगर वंस. कैसे हम वो पैटर्न को समझें एंड व्हाट वी कैन डू फॉर देम.
0: ओके.
1: एंड हाउ विल वी यू नो कंफर्ट देम और यू नो मेक देम.
0: थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन मैम. कमिंग फ्रॉम अ टीचर, जैसे मैं स्टार्टिंग में कहा था कि कलेक्टिव एफर्ट है, सबका रोल है, सम वेरी ग्लैड दैट दिस क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम अ टीचर्स पर्सपेक्टिव. कि अगर स्टूडेंट या इरेस्पेक्टिव लाइक द रिलेशनशिप कोई हमसे छोटा किसी डिस्ट्रेस में है, तो पहले हम वो साइंस को कैसे रिकॉग्नाइज करें. आपने करेक्टली कहा कि जैसे अगर बच्चा, तो हमें थोड़ा नोटिस करना है कि सडन चेंज क्या आ रहा है पर्सनैलिटी में. अगर आउट गोइंग बच्चा सडनली शांत हो जा रहा है, वो क्लियर कट साइन है. बट देन इसके अलावा भी कुछ साइंस है जो हम मिस कर देते हैं. जैसे कि अगर बच्चा हमें पता है कि किसी डिस्ट्रेस से गुजर रहा था, उसके बारे में बात कर रहा था, लेकिन सडनली अब काम हो गया है, एकदम ही शांत हो गया है, या फिर एकदम ही पॉजिटिव वे में सब चीज़ें ले रहा है, तो काफ़ी बार लोगों को लगता है कि नाउ थिंग्स आर बेटर. बट एक्चुअली थिंग्स आर द थिंग इज मेंटली उसने गिव अप कर दिया. मेंटली उसने एक डिसीजन बना लिया है कि अब तो टेंशन लेके भी कोई फ़ायदा नहीं है, अब रोके भी कोई फ़ायदा नहीं है, दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू डू. नाउ व्हाट एज अ टीचर वी कैन डू टू प्रिवेंट दिस इज, फर्स्ट जब आप चेंजेस ये सब देख रहे हैं, एक्नॉलेज दैम, सिट विद दैट चाइल्ड एंड बी वर्बल अबाउट व्हाट यू सॉ और व्हाट यू नोटिस, एंड विदाउट बीटिंग अराउंड द बुशेस डायरेक्टली आस्क, आर यू थिंकिंग अबाउट killing yourself, are you thinking about suicide. Now ये बोलने में बहुत discomforting लगता है कि ये directly कैसे बोले, मतलब इससे तो फिर हो जाएगा कि हम ideas दे रहे हैं. लेकिन अगर आपने देखा कि कहीं कहीं signs है, बच्चा बोल रहा है कि there's no point in leaving, या मेरा बस हो गया है, या देख रहे हो आपके बच्चा कहीं parents अगर ये सुन रहे हैं तो बच्चा suddenly अपने password सब लिख रहा है, या suddenly randomly किसी फ्रेंड को टेक्स्ट कर रहा है थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, ऑल ऑफ दीज आर इम्पॉर्टेंट साइंस टू पिक अप एंड देन डायरेक्टली आस्क कि इज देर एनीथिंग यू वॉन्ट टू टेल मी एंड आई एम हियर टू लिसन टू यू. और डायरेक्टली वो टॉपिक निकालो, क्योंकि हो सकता है कि आपके अलावा एज ए मतलब टीचर ने उनको पूछा है, शायद उसके अलावा पहले किसी ने नोटिस नहीं किया हो, पहले कभी किसी ने ये शायद ये थॉट के बारे में उन्होंने भी खुद से कभी बोला ना हो, तो वो जब आप सामने से डायरेक्टली पूछेंगे तो उन्हें एक स्पेस मिलेगा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए. आई टोल्ड यू कि पिक अप ऑन दैट एंड सो किसी को अगर कंटिन्यू करें हम, तो एक गेट कीपर ट्रेनिंग होती है जहाँ पे हम ट्रेनिंग देते हैं लोगों को कि सुसाइड प्रिवेंट कैसे करें, क्या नेक्स्ट स्टेप करें. तो एक मॉडल होता है विच इज़ कॉल्ड एज QPR मॉडल. तो क्यू में यू आस्क क्वेश्चंस एंड देन यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली पूछो. देन पी में इट इज़ नॉट लाइक कि आपको सडनली उसको परसुएड करना है कि डोंट डू इट. सडनली वो होगा भी नहीं और वो शायद उस स्टेट पे है भी नहीं कि सारी लॉजिकल रीजनिंग वो एक्सेप्ट कर पाए. तो उस टाइम पे ज़रूरी है कि आप डिले करें जितना उनके मतलब असेस करें क्वेश्चनिंग के टाइम पे कि रिस्क कितना है. अभी असेस कैसे करेंगे, चेक करना कि सिर्फ आइडिया है या प्लान भी है, सुसाइडल आइडिएशन है या सुसाइडल प्लान भी है. अगर उन्होंने प्लान भी करके रखा है कि आसपास ये है तो आई कैन डू दिस या आई कैन जंप फ्रॉम दैट, सो इट्स द रिस्क इज मच हायर एट दैट टाइम. तो वो रिस्क असेसमेंट करने के बाद पर्सुएशन पे यू जस्ट हैव टू सिट देयर विद देम, पर्सुएड देम दैट दिस इज नॉट द टाइम टू टेक एनी एक्शन एंड आई एम हियर विद यू. इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गिविंग देम सोल्यूशन, जस्ट टेल देम दैट दे आर हियर विद यू. तो वो लोनलीनेस का जो मैंने कहा था वो भी थोड़े उन्हें फील होगा कि येस समवन इज देयर एंड दे डू नॉट हैव टू कैरी दिस मच पेन ऑन देयर ओन, समवन इज देयर फॉर देम टू शेयर इट विद. बोलो कि हम साथ में ये चीज़ हैंडल करेंगे एंड देन आर इज टू रेफर इट टू पीपल हु आर एक्सपर्ट्स, फॉर एग्जाम्पल सोशल वर्कर्स, काउंसलर्स, साइकियाट्रिस्ट, इमरजेंसी केयर सेंटर्स. अगर ये सब इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है तो आपको हेल्पलाइन नंबर्स है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. या तो आप उनके साथ बैठो और बोलो कि लेट्स टुगेदर कॉल देम एंड लेट्स टॉक टू देम. तो टेलीमेनेस एक हेल्पलाइन नंबर है, आई कॉल इसका आई कॉल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. तो ये आप हेल्पलाइन नंबर उसे दो, देन उनको
1: इमीडिएटली छोड़ कर ये सब देख के चले ना जाए. इट इज़ इम्पोर्टेंट कि अगर आपने रिस्क असेसमेंट किया है, लग रहा है हायर है, तो बी अराउंड देम एंड सी कि आसपास उन्होंने कोई भी ऐसे लीथल मटेरियल नहीं है, कोई भी ऐसे ऐसी चीज़ नहीं है जिससे सेल्फ हार्म हो सके, जैसे कि शार्प ऑब्जेक्ट या कोई ऐसा एरिया जहाँ से वो जंप कर सके. सो इट्स वेरी नेसेसरी दैट यू स्टे अराउंड देम इवन इफ दे पुश यू कि नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई डोंट वॉन्ट टू सी यू, तभी भी इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू स्टे विद दैट.
0: Insightful information and definitely ये सभी के काम आने वाला है, not just as a teacher but as a adult who is a grown person and not only grown person but whoever it is listening, वो सबके काम आने वाला है.

0: completely true, that is correct. Can you tell me certain myths or stereotypes that you think that are very common among everyone regarding suicide?
1: It's like talking about it will give out the impression that you are weak or you're not strong enough, or talking about it is not normal. तो यही जो नॉट नॉर्मल वाला फिनोमिना है, लोगों को कंफर्टेबल इसलिए भी नहीं फील होता है बात करने में, नॉट जस्ट बिकॉज कि आसपास लोग नहीं है ट्रस्ट करने वाले. हो सकता है कि ट्रस्टफुल लोग हैं, हो सकता है फैमिली सपोर्टिव है, टीचर सपोर्टिव है, बट उन्हें वो बोलना नहीं आ रहा है क्योंकि कभी उन्होंने देखा नहीं है. वो कोई मॉडल करने वाला कभी कोई एडल्ट था
0: करेक्ट.
1: नहीं. सो वाई मोस्ट ऑफ द यंगर पीपल आर स्ट्रगलिंग टू स्पीक अबाउट इट इज ऑल्सो बिकॉज अ लॉट ऑफ ओल्डर पीपल आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू टॉक अबाउट इट. दे हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड अ ग्रोन अप बी वल्नरेबल, या उन्होंने नहीं देखा है लोगों को एक्सप्रेस करते हुए उनकी वीकनेसेस या अपने इमोशंस के बारे में बात करते हुए, उन्होंने नहीं देखा है. तो व्हेन अ चाइल्ड इज ग्रोइंग अप या थोड़े वो टीनेज या अडल्ट इसमें पहुँचते हैं, तो वो धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगते हैं कि आई थिंक यही रियलिटी है. मुझे अगर मेच्योर रहना है देन आई नीड टू बी टफ, या आई शुड नॉट शेयर इट विद एनी वन एंड आई शुड डील विद इट ऑन माई ओन. एंड देर आर अगेन मी एज आई सेड कि मीडिया ऑल्सो हैज़ अ रोल इन इट. सो देर अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट ऑन इंस्टाग्राम दैट सॉर्ट ऑफ ग्लोरीफाइज दिस होल थिंग ऑफ डूइंग इट ऑल अलोन. आई एम नॉट सो नॉट नॉट आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ डूइंग थिंग्स अलोन, बट इट इज़ नॉर्मलाइज इन सच अ वे, इट इज़ ग्लोरीफाइड और रोमेंटिसाइज इन सच अ वे दैट इट इज़ लिमिटिंग पीपल टू टेक हेल्प. वाई इन इंडिया पीपल हु हैव नेवर रेड, दे हु वर नेवर इंटरेस्टेड इन रीडिंग, वाई आर दे इंटरेस्टेड इन रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स? इट इज़ बिकॉज द आइडिया ऑफ हेल्पिंग देम सेल्व्स या टेकिंग केयर ऑफ देयर मेंटल हेल्थ इज ओनली अप टू देम, देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. बाकी लोगों को इस पर इन्वॉल्व करने का कोई ज़रूरत है नहीं. ये ऑल दिस थिंग्स आर सॉर्ट ऑफ लिमिटिंग देम इन आस्किंग फॉर हेल्प. या आस्किंग फॉर हेल्प वुड बी अ सेकेंडरी, सिंपली टॉकिंग अबाउट इट इज बिकॉज उन्हें नहीं देखा है कि कोई बड़ा उसके बारे में बात कर रहा हो.
2: आई वुड गिव ओपिनियन अबाउट दिस कि हम जनरेशनल गैप होते हैं. व्हेन यू टॉक अबाउट पेरेंट्स एंड व्हेन यू टॉक अबाउट चिल्ड्रन देयर इज अ लॉट ऑफ जनरेशनल गैप एंड अंडरस्टैंडिंग गैप. जहाँ पे इफ वी सी आजकल के जनरेशन में मेंटल हेल्थ इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. एंड ओल्डन जनरेशन को आप देखोगे जब, तो वहाँ पे आई थिंक फिजिकल हेल्थ वॉज मच मोर इम्पॉर्टेंट एंड अवेयरनेस नहीं थी. आज के जनरेशन में वो अवेयरनेस है. अगेन मीडिया कम्स इन द प्लेस वेयर
1: इट हैज हेल्प्ड इन अ पॉजिटिव वे.
2: एंड थ्रू द मीडिया हम बता रहे हैं कि मेंटल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है. एंड छोटी से छोटी बातें रिपोर्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है.
1: एंड राइटली रिपोर्ट करना, सेंसिटिवली रिपोर्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है.
2: सो आज मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो छोटे से छोटी चीज़ों को लेके डिस्टर्ब होते हैं. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कभी कुछ शेयर ही नहीं किया, बट दे आर इन टू वेरी मेजर आई वॉन्ट नॉट यूज वर्ड डिप्रेशन, बट उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई होती है, वो शेयर नहीं कर पाते. दे बिहेव वेरी नॉर्मल. एंड कुछ बच्चे ऐसे हैं कि छोटी से छोटी बातें होती है तो दे आर एक्सप्रेसिव. So their nature is
1: yeah. हर स्टूडेंट का तरीका अलग होता है एक्सप्रेस करने का. कई लोग कंफर्टेबल है शेयर करने के लिए कर पाते, कई लोग कंफर्टेबल होके भी उन्हें शायद नहीं वोकैबुलरी मिल रही है कि कैसे कर पाए. और मैम आपने एक चीज़ बोली कि कई बार बच्चे जो है डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं बट कभी वो दिखाते नहीं है. दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोटिस बिकॉज इट्स अ वेरी रियल थिंग. कई बार अगर जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं जिनके घर पे किसी ने सुसाइड किया होता है तो लोग बोलते हैं कि हमने कभी देखा ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है, या कभी लगा ही नहीं कि ये इंसान अपनी जान दे सकते हैं. तो बाकी सारे जो चेंजेस हैं बिहेवियर में, इमोशन में जो दिख रहे हैं, ठीक है हम वहाँ से हेल्प कर सकते हैं, बट काफ़ी बार साइंस ऐसे होते हैं जो नहीं दिखाई देते, या जो काफ़ी नॉर्मल हो गई है कि हमेशा हंसते रहना, एक दूसरे की हेल्प करते रहना, तो लोग जो है यहाँ पर फिर बात नहीं करते, उनको लगता है सब ठीक है. तो अगेन इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, अगर सब ठीक है तो भी टाइमली चेक इन करना और कम्युनिकेट करना,

0: चैनल देना फॉर ओपन कम्युनिकेशन कि अगर कुछ है तो आप आके मुझसे बात कर सकते हो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टेड ऑफ सिंपली अज्यूमिंग कि ये इंसान तो सब अच्छे से कर रहे हैं, एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो दैट मीन्स एवरीथिंग इज़ ओके. लेट्स नॉट अज्यूम दैट.
1: एंड आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन सोशल मीडिया वेयर पीपल हैव लॉट ऑफ यू नो, मैं ये बोल सकती हूँ कि एग्जाम्पल बता सकती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है दूसरे स्टूडेंट्स को हरास कर रहा है, देयर विल बी हरासमेंट, देयर विल बी अ डिप्रेसिंग थॉट्स वेयर स्टूडेंट इज शेयरिंग दोज काइंड ऑफ अ थॉट्स. ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अ स्टूडेंट्स एनीवन. ओके, तो वो पैटर्न ऑब्जर्व करना इज दैट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट,
0: वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे दो टॉपिक है, पहला एक हरासमेंट का है एंड दूसरा साइंस जो हमें सोशल मीडिया पोस्ट में दिखता है रिलेटेड टू सुसाइड. हरासमेंट इज़ अ वेरी इज अ थिंग दैट वी नीड टू रिपोर्ट. अगर हमें पता चल रहा है कि किसी बच्चे का पिक्चर किसी ने गलत तरीके से यूज़ किया हो या उन्हें कोई ऐसा कॉन्टेंट शेयर किया हो गया हो विच इज़ एक्सप्लिसिट या दैट मेड अ पर्सन फील अनसेफ, दैट इज़ वेरी, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रिपोर्ट दैट केस एंड साइबर सिक्योरिटी का वहाँ पे हेल्प ले. Second, about someone posting things which is very closely related to feeling of hopelessness या कोई ऐसी poetry लिखना जहाँ पर थोड़ा सा sadness जो है वो अच्छा लग रहा है या sad status लगाना, तो कई बार लोग बोलते हैं कि ये तो हर महीने का है, इसका ये attention seeking activity है, ये करते हैं. तो I just want to say कि pick up that sign, even though if it's an attention seeking activity, they are telling you that they need attention. It is very important that you do not ignore them. And what हो सकता है कि उनकी artistic personality ही हो कि वो sad सब कुछ post करें, फिर भी उनसे बात करो, timely checkup करो, शायद वो dismiss करे इस चीज़ को, ठीक है शायद नहीं है वो चीज़, but it is very important to ask because it's better to be safe than sorry, right? What if everything was right in front of them and हमने assume कर लिया कि it's just her personality or that's how the artist mind work. ये सब चीज़ें सोच के हमें रुकना नहीं है. अगर हमें लग भी रहा है कि वो अटेंशन सीकिंग एक्टिविटी है, देन इट्स अ क्लियर बिग साइन, गिव देम अटेंशन, टॉक टू देम.
2: मैम, डू यू थिंक लाइक सोशल मीडिया रीच आउट टू यू फर्स्ट, व्हाट एवर लाइक आपका जो भी थॉट्स है या फिर फीलिंग्स आपके जो चल रहे हैं, ना सिर्फ थॉट्स, सबसे पहले जो आपके पास रीच आउट करता है वो है सोशल मीडिया, बिकॉज जो भी आपका फीड रहता है एंड वो टोटली वर्क करता है आपके मेंटल स्टेट के ऊपर. लाइक इफ यू आर ड्रीमिंग अबाउट समथिंग एंड द नेक्स्ट मोमेंट यू ओपन द सोशल मीडिया यू सी देन लाइक
0: ओके नाउ अबाउट एल्गोरिथम. आप मीडिया के स्टूडेंट्स हो, आप मुझसे ज़्यादा जानते हो यहाँ पे, तो फिर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, डू यू थिंक अभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जहाँ पे वो जो है पढ़ रहा है हमारे ड्रीम्स?
2: या आई डू थिंक
0: आई है.
1: I think moreover, pertinence is rather whatever we are talking or whatever we are searching.
3: Exactly.
0: Yes, absolutely. That is being recorded and that's how your algorithm picks it up. And then constantly आपको उसी चीज़ पे content बार बार दिखाया जाएगा. और जब constantly उसी चीज़ पे वो exposure आ रहा है तो unconsciously जब आप फिर आप सोओगे तो आपको वो dream में भी आएगा. इट इज़ ट्रू दैट कॉन्स्टेंटली आपका फोन भी आपको रिमाइंडर दे रहा है कितनी सारी चीज़ के. एंड सुसाइड प्रिवेंशन के अराउंड जितना कॉन्टेंट है ऑनलाइन उतना ही इट इज़ शॉकिंग एंड बट इट इज़ सो रियल कि सुसाइड के अराउंड भी ऐसा कंटेंट है जो प्रमोट कर रहा है सुसाइड. मतलब आई रिमेंबर सीइंग अ पोस्ट दैट टॉक्स अबाउट कि पीपल हैव सो मैनी गुड थिंग्स टू टॉक अबाउट यू बट फॉर दैट यू नीड टू एंड योर लाइफ.
2: Yeah, that's my point. Yes. Like, social media presents both positive and negative
0: perspective. Yeah, the extremes are there, yes. Right? So, अगर आप social media handle कर रहे हो या manage कर रहे हो, media को represent कर रहे हो, तो it is very important that you be sensitive and responsible while you are representing it. Now, media जैसे काफी help किया है media ने to give a platform जहाँ पे लोग ओपनली डिस्कस कर पा रहे हैं या एजुकेशनल कॉन्टेंट अराउंड मेंटल हेल्थ कंज्यूम कर पा रहे हैं. काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं जो कॉन्टेंट बना रहे हैं एक्टिवली. बट ऑन दी अदर हैंड उस सेम एल्गोरिदम में, उस सेम मीडिया में हमारे पास एक्सट्रीम कंटेंट है जहाँ पे जो, क्योंकि अब साइकोलॉजिकल वर्ड्स काफ़ी अवेलेबल है. अगेन आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू कि आपने नॉर्मली डिप्रेशन अ वर्ड यूज़ नहीं किया, आपने थोड़ा हेजिटेट किया वहाँ पे. तो वी नीड सच लाइक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इफ़ यू आर ऑन मीडिया, बिकॉज इफ़ माई स्टूडेंट्स आर लाइक लिसनिंग टू मी, दे नो कि मैंने कितनी बार उनको बोला है डू नॉट कैजुअली यूज़ दीज वर्ड्स, दे आर रियल मेंटल हेल्थ कंडीशन, डू नॉट यूज़ इट इन योर बायो दैट आई एम अ साइकोटिक पर्सन, या लाइक डू नॉट मेक फन ऑफ दीज टॉपिक्स, डू नॉट मेक इट कूल कि किड्स ऑफ ऑटिस्टिक समथिंग समथिंग बायो में लिखा होगा. सो ट्रीट मेंटल हेल्थ कंडीशन एज अ कंडीशन. हम किसी दूसरे फिजिकल कंडीशन को इस तरह से बायो में लिख के मजाक नहीं उड़ाते. तो दिस वर्ड्स का यूज करना इज नॉट हेल्पिंग अस इन एनी वे, इट इज सॉर्ट ऑफ डिसमिसिंग द एक्चुअल वैल्यू और सॉर्ट ऑफ मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द पर्सन इज एक्चुअली गोइंग थ्रू इट टॉक अबाउट इट ओपनली, बिकॉज उनको लग रहा है कि ये तो मजाक की तरह लिया जा रहा है. सो देर आर टू एक्सट्रीम्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड, एंड as a professional media representative we need to be mindful of how we are presenting the content.
2: Like ma'am, jab hum media ke around revolve kar hi rahe, so do you also think ke jo pr works hote hain like instagram pe comment sections hote hain, that also like affect the audience? The person, koi ek particular person ko wo cheez affect karti hai, like comments ho gaye aur response ho gaye,
0: right एक रील पे किसी ने अगर समझो खुद का ही कोई फोटो पोस्ट किया हो, लेकिन इट वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर देम, बट देन समवन विल कॉल इट क्रिंज. कोई बोलेगा कि ये कैसा दिखावा कर रहे हैं, या दिस इज सो क्रिंज. सो या पीपल आर आउट देयर टू मेक कमेंट्स जहाँ पे दे विल कॉन्स्टेंटली कंपेयर यू नो मैटर व्हाट यू पोस्ट, दे विल क्रिटिसाइज यू. सो या दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स अ लॉट, अभी काफी ज्यादा फर्क पड़ता है.
1: रेफरिंग टू दिस, आई रिमेम्बर वन ऑफ द इंटरव्यू काइंड ऑफ रिचा चड्ढा था, जहाँ पे वो इंटरव्यू के टाइम पे एक क्वेश्चन आता है उसके पास कि डज इट इम्पैक्ट आपके कमेंट सेक्शन में जो ये नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, डज दैट इम्पैक्ट यू. सो शी कमेंट ऑन दैट कि दिल्ली में बैठ के चिंटू मेरे बारे में क्या बोलता है, व्हाई डज इट इम्पैक्ट. So that is a positively she has taken.
0: That it again depends on the person. Exactly. Richa Chadda maybe had that resources around them or media people around them who were there to educate them ki ye PR tactics hai, ya they are just random bullies. But not everyone is equipped with that kind of support around them. Maybe someone is sitting in some rural area, because now internet is everywhere. Screen touch, like good quality mobile phone is everywhere. So they are simply presenting everything, and they do not know that these are simply chatbots who are doing things like only to bully someone. So they don't understand, and वहाँ पे उनको again depends on person to person and the kind of support that they have, their own coping mechanism, how they deal with situations like this.
3: With this related to one thing, I want to share one small experience. When we were doing, so Smita and we were in same degree college. We did our same bachelor's together in psychology, and we had this one professor. During our lectures, she was explaining something, and this particular one thing that she mentioned that time, which influenced me, and that I still use it. And I feel like if you are surrounded by such kind of people and you have such kind of awareness, it can help you to, you know, personally. And it was that she told me, never give a remote of your life to someone else to make you feel a certain way. And that I still use, that why will I let anyone else make me feel upset or happy or whatever I'm feeling right now? I have the control of myself right now. Whatever I'm feeling, whatever I'm saying, whatever I'm thinking, I have the control over my body, my thoughts and everything. I am not going to let anyone else make me or affect me about anything. Talking about this Instagram post, if someone is texting me, if I have that strong mindset, depends from person to person. If I have that strong mindset, it will not affect me. But if someone, if there's someone जिनको ये छोटी छोटी बातों का बहुत फर्क पड़ता है, बहुत बुरा लगता है कि वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगी, उसने मेरे बारे में क्या सोचा, मैंने ये पोस्ट डाला तो क्या सबको अच्छा लगेगा, और उस पर अगर कोई कॉमेंट करे ऐसे नेगेटिव, तो उस इंसान को बहुत फर्क पड़ेगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि you need to have like little that kind of surrounding, little awareness, little strong mindset to you know have that kind of energy ki haan theek hai ab koi kuch bhi bole mujhe is cheez ka farak nahi padega, I am going to do my best in life.
0: Thank you for sharing that, Anshul. Actually that sort of that is making me feel so grateful that we came from a background jahan pe hamare aas pass log the to remind us ki see that help is available, yeah, you can take care of these things. That's a privilege that still India mein bahut sare logon ke paas nahi hai, that the privilege of having people like our professors who are there to tell you that hey, I'm here to support you. इंस्टेड लाइक अगेन मैंने जैसे कहा कि काफ़ी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो स्कूल को भी काम करना है, टीचर्स को भी आई फील की ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि तुम कैसे हम कैसे एक माहौल क्रिएट कर पाए जहाँ पे बच्चा को ये ना फील हो क्लासरूम में आके कि मैं तो फेलियर ही हूँ, क्लास में जब रह के फेलियर फील हो रहा है, घर पर रह के फेलियर फील हो रहा है. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम सिर्फ बच्चों के साथ, हम एक्टिवली सच में सब जगह ट्रेनिंग कर ही रहे हैं और बच्चे एक्टिवली कंज्यूम कर ही रहे हैं कॉन्टेंट अराउंड मेंटल हेल्थ, बट वी नीड टू वर्क विद अडल्ट एज वेल, विद टीचर्स, विद पेरेंट्स, जहाँ पे वी ऑल्सो ट्रेन दें कि कैसे हम वो क्रिएट कर पाए सिचुएशन, बिकॉज उनकी ट्रेनिंग भी इसलिए ज़रूरी है कि उन्होंने कभी वो एक्सपीरियंस नहीं किया है, अनफॉर्चुनेटली उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं थे. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी गो अहेड एंड गिव देम दैट. Now this will again motivate me to start posting online. थोड़े टाइम पहले ही मैं बात कर रही थी कि हो नहीं पाता है मुझसे कैमरे के सामने पोस्ट नहीं कर पाती हूँ या टाइम नहीं मिलता है, बट दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हम मीडिया को जितना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मीडिया में राइट रिप्रेजेंटेशन करने का काम भी फिर कौन करेगा? इट इज़ अप टू पीपल लाइक अस हू हैव राइट नॉलेज.
3: वन लास्ट क्वेश्चन. So, being a professional, what is something that you want to share out there, anything that it can be personal or anything, that everyone should know, that anything about suicide prevention?
1: And also, adding to that question, I would add ki parents is pe kaise kaam kar sakte, mainly because bachcha parents ke saath rehta hai, wo bond create karna bahut important hai.
3: Yeah.
1: टीचर्स रहते हैं कुछ घंटों के लिए होते हैं, आई मीन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम आई फील माई पर्सनल ओपिनियन दैट पेरेंट्स शुड एक्चुअली बी एजुकेटेड अबाउट द मेंटल हेल्थ.
0: यस यस, पहले तो पेरेंट्स को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी चीज़ें कि रियल प्रॉब्लम्स हैं और काफ़ी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है जो बोलने में, विच इज़ ओके, वी नीड टू एक्सेप्ट इट कि आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है. एज अ पेरेंट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चे को ये बोलो कि नो मैटर वॉट आई एम योर फॉर यू. फिर अगर बच्चा, अगर आप ये कॉन्स्टेंटली रिमाइंडर दे रहे हो बच्चे को, तो हो सकता है कि वो पर्सनल ज़्यादा चीज़ें या डे टू डे चीज़ें आके ना भी शेयर करे, लेकिन अगर कोई एक्सट्रीम सिचुएशन होगा जहाँ पर बच्चा जेन्युइनली नीड्स हेल्प, उसको उस टाइम पर याद आएगा कि माई पेरेंट्स सेड told me that no matter what, I'm there with you. So this constant reminder should be there. And सिर्फ बोलना important नहीं है, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा आके आपके साथ communicate करे, it is also important कि आप भी communicate करो. मैंने पहले modeling के बारे में बोला था कि बच्चे को express करना नहीं आ रहा है क्योंकि उसने कभी देखा नहीं है किसी बड़े को उसके बारे में बात करते हुए, तो आप भी आके अपने, अगर आप अपने दिन के बारे में शेयर करो, अगर ऐसा है कि कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ हुई है या कुछ अनकंफर्टेबल चीज़ें हैं जो आप बोलने में थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है बच्चे के साथ, फॉर एग्जांपल टॉकिंग अबाउट पीरियड्स, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि आपको काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रहा है पीरियड्स के बारे में बात करके. एज अ फादर और अ डॉटर या एज अ मदर और अ डॉटर फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ विस्परिंग मेक अ क्रिएट एन एनवायरमेंट जहाँ पे आप ओपनली उसके बारे में बात कर रहे हो. इससे क्या होगा, अगर आप डिस्कम्फर्ट के साथ भी बात करोगे ना, तो बच्चा विल पिक अप कि मेरे पेरेंट्स ने इतने डिस्कम्फर्ट के बाद भी, इतना हिचकिचाने के बाद भी ट्रस्ट किया और ये डिस्कशन उन्होंने किया मेरे साथ, तो मैं भी फिर एज अ चाइल्ड सीखूंगी कि मुझे भी कितना मुश्किल लग रहा है, बट आई कैन ट्रस्ट देम एंड आई कैन ट्राई. सो दैट इज़ वन. सेकेंड, फॉर लाइक टू आंसर योर क्वेश्चन कि सुसाइड प्रिवेंशन के लिए एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मुझे क्या बोलना है, कि मैं अभी बोलूँ कि यू आर नॉट अलोन, ये काफ़ी ज़्यादा आयरनी हो जाएगी बिकॉज यू जेन्युइनली आर फीलिंग अलोन. बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ जो आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो पेन, वो आपको कमज़ोर नहीं बना रहा है. दैट डज नॉट मीन कि आप कमज़ोर व्यक्ति हो क्योंकि आप वो फील कर रहे हो. नो, द रियलिटी इज़ कि आपके आसपास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, तो वो पेन के साथ कोप करने के लिए शायद इनफ रिसोर्सेज आपको नहीं दिख रहा है. सिर्फ ये एक ही तरीका आपको दिख रहा है, दैट इज़ टू एंड योर लाइफ. बट ट्रस्ट मी, रिसोर्सेज है. वी डोंट नीड टू आंसर एवरी थिंग ऑल टुगेदर. हमको सब चीज़ का आज ही आंसर नहीं चाहिए. ये एक पॉडकास्ट इज नॉट वन स्टॉप सोल्यूशन कि इसके बाद से सब ठीक हो जाएगा. नहीं, वी नीड जस्ट वन मोर नाइट, वन मोर डे, जहाँ पे वी टेक स्मॉल स्टेप्स एंड दिस विल हेल्प अस लुक एट द रिसोर्सेज दैट इज अवेलेबल टू अस. द फर्स्ट थिंग इफ आई वुड वॉन्ट टू वॉन्ट माई ऑडियंस या एनी वन हु इज हैविंग सुसाइडल आइडिएशन इज जस्ट टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम एंड टॉक टू समवन. टॉक टू एनी वन यू फील कम्फर्टेबल विद, योर क्लास टीचर, योर काउंसिलर, योर फ्रेंड या एनी ट्रस्टेड अडल्ट दैट यू हैव अराउंड यू. एंड इफ वो भी नहीं आपको लग रहा है कि कोई नहीं समझ पाएगा, देन आई ऑल्सो मैंशन फ्यू हेल्पलाइन नंबर्स दैट यू कैन रीच आउट, जैसे टेलीमानस या आई कॉल. तो आप इन पर भी रीच आउट कर सकते हो. अगर आप डिस्क्रिप्शन पर इफ यू कैन मैंशन दीज नंबर्स, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल.
1: सो दैट वॉज वेरी इंसाइटफुल कॉन्टेंट एंड आई थिंक इस कॉन्टेंट से लेकर काफ़ी बच्चों को हेल्प होगी, काफ़ी अडल्ट लोगों को भी हेल्प होगी एंड ऑल्सो आई वुड हाईलाइट कि पेरेंट्स को भी हेल्प होगी टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड एंड अंडरस्टैंड द मेंटल हेल्थ. एंड बाकी जो जो भी सुन रहा है, मेंटल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको पता चल जाएगा इस एपिसोड से. सो यू आर लिसनिंग आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो. हमारे साथ थे मिस इशिता मिश्रा. हमारे साथ थे मिस स्मिता मिश्रा एंड आचल सिंह. साइनिंग ऑफ टुडे. थैंक यू सो मच.

0: फ्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,

0: नमस्ते दर्शकों, आज हम सेलिब्रिटी शो में हमने आमंत्रित किया है नीलम गोयल जी को। नीलम जी नमस्ते,
1: नमस्ते।
0: आपका स्टूडियो में भी स्वागत है और हमारे आचार्य 90 FM पे स्वागत है और सेलिब्रिटी शो में भी आपका स्वागत है। नीलम जी गोयल एक स्नातक, आगरा यूनिवर्सिटी की स्नातक रही हैं और कुकिंग क्लासेस, लिखना पढ़ना, समाज सेवा, सोशल वर्क, इन स्लम एरिया इनका कार्य रहा है। काउंसलिंग फॉर कैंसर पेशेंट्स, लोगों से मिलना और मुक्त छंद की कविताएं लिखती है, कृष्ण के भजन गाती है और आखर मुक्ता साहित्यिक पत्रिका में स्वरचित कविताओं का, उनका गीत का छपना हुआ है। कहे अनकहे शब्दों का कैनवास इस कहानी संग्रह में, स्वयं रचित कहानी मुट्ठी भर सपने का भी छपना हुआ है। साहित्यिक प्रतियोगिताओं में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित 21 सर्वश्रेष्ठ कहानियां पत्रिका को उन्होंने जीता है और पतंजलि योगपीठ से प्रमाणित योग शिक्षिका भी रह चुकी है। बहुत सारे ये सब आप वही पूछना चाहूंगी, इतना सारा आप व्यस्त रहती है, पूरा 24 घंटे भी आपको कम पढ़ते रहेंगे, तो ये सब आप मैनेज कैसे करती है वो शुरू में करना?
1: बस मेरे को ना कुछ है कि मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है
0: जी।
1: और इन सब चीजों से मैं बचपन से थोड़ी प्रेरित रही हूँ, क्रिएटिव मैं शुरू से ही थी
0: जी।
1: और ये जो पढ़ने का शौक मुझे लगा वो मेरी मदर से लगा।
0: अच्छा।
1: क्योंकि वो उस समय भी ना ये कौन कौन सी पुस्तिकाएं होती थी, धर्मयोग और ये कादम्बिनी, इस तरह की मतलब हाई लेवल की बुक्स पढ़ती थी। वो 12th पास थी उस समय की, लेकिन कोई जॉब नहीं किया था। तो बस मुझे वो उनको पढ़ते देखती थी और धीरे धीरे धीरे धीरे मुझे मेरे को रीडिंग करने की जो मिल जाता था, धर्म कोई भी पत्रिका, अखबार, मतलब जो भी मिल गया वो मुझे उसको पढ़ना है।
0: वाह, वेरी नाइस। आपके साहित्य के बारे में हमें बहुत कुछ जानना है, लेकिन आप कविताएं, जैसे हमारी पहली मुलाकात में आप मुझे जान गई थी, आप बहुत कथा सुंदर से प्रस्तुत करते हैं, कविताएं भी लिखती हैं, तो जाहिर सी बात है अभी आपने माँ का जिक्र किया तो हमारी सबकी शुरुआत तो माँ से ही होती है, तो माँ के ऊपर आपने जो कविता लिखी है वो हमें सुनाइए प्लीज।
1: सबका धन्यवाद, नमस्ते। माँ केवल एक शब्द ही नहीं है, माँ बल्कि असीम शक्ति, ममता और आस्था का स्वरूप है। जब जीवन में अंधेरा छा जाता है तो माँ का नाम ही एक दीपक बनकर हमारे जीवन में उजाला करता है और रास्ता दिखाता है। आज उसी जगत जननी शक्ति स्वरूपा माँ के चरणों में, श्री चरणों में अपनी भावनाओं का ये छोटा सा भजन अर्पित करने जा रही हूँ, श्रद्धा भक्ति के साथ आप सब जुड़िए
0: जी।
1: पधारो माँ पूजा को, पधारो माँ पूजा को, हृदय मंदिर सजाया है।

0: बनाया है
1: क्या बात है,
0: पहन लो प्यार का गजरा, बहुत सुंदर बनाया है, पधारो माँ पूजा को, पधारो माँ पूजा को।

0: क्या बात है, वेरी नाइस। जय माता दी। मेरा मन तो गंगा मैया के यहाँ पहुंच गया वाराणसी में, क्योंकि कितनी सुंदर, मतलब हम वो गंगा मैया को माँ कहते, पुकार के बुलाते हैं, और जो गंगा आरती का जो विलोभनीय दृश्य हमें अभी आपकी ये कविता में, ये पद में साकार हुआ, वेरी नाइस, वेरी मतलब वेरी टचिंग। अभी शुरू करते हैं कि आपका जो साहित्य प्रवास है, आपने जैसे बोला कि माँ बहुत बुक्स घर में रहते थे, तो आप पढ़ते गए मतलब जो शैक्षणिक, जो भी हमारा स्कूल का पढ़ना रहता है वो अलग, और आपको हिंदी में ज़्यादा रुचि है, तो आपने बीए इन हिंदी भी वैसे किया है, तो हिंदी के प्रति लगाव या फिर आशा, आपको कौन से लेखक पसंद है हिंदी के, उसके बारे में और क्यों पसंद है?
1: मेरे को मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ बहुत पसंद हैं
0: जी,
1: और रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियाँ बहुत, क्योंकि ये ना हमारे आसपास जो दिखता है उन सब से जुड़ी हुई है, सामाजिक समस्याएं, स्त्री की समस्याएं, और समाज में जितनी भी व्यभिचार या जितना उत्पीड़न होता है, तो उन सब के ऊपर जो कहानियाँ लिखी है, तो मुझे वो बहुत टचिंग
0: लगते
1: हैं। भावपूर्ण होती है, और मेरे को ना कहीं गहरे तक, ऐसे ही ना क्या हुआ, कभी मैंने कहीं किसी से कुछ सुना, मेरी बड़ी दीदी है तो वो भी साहित्यिक में बहुत पहुंची हुई है, बहुत ज्यादा। हाँ,
0: अच्छा।
1: तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मेरे को उसमें मैं लिखने लगी, लिखते लिखते क्या हुआ, जुहू में रहते थे हम लोग, तो वहाँ कृष्ण मंदिर था
0: जी,
1: वॉकिंग डिस्टेंस पे।
0: हाँ।
1: तो मैं सडनली, मैंने सोच लिया था कि मैं वहाँ जाके पहले दर्शन करके फिर ही नाश्ता किया करूंगी।
0: हाँ।
1: वहाँ जाके जब मैं पिन ड्रॉप साइलेंस होकर शांति के साथ जब बैठती थी ना,
0: हाँ।
1: तो बस भगवान का चेहरा देखती थी, तो उस चेहरे को देखकर मेरे को अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो मैं जब उनको देखती थी ना, तो मेरे को रोना आता था।
0: अच्छा।
1: और रोते रोते धीरे धीरे धीरे धीरे वो भाव उत्पन्न होने लगा।
0: हाँ हाँ।
1: और पता लगा, मैं तो वहाँ बैठे बैठे मोबाइल में ही उस समय जो आता था उस समय लिखती थी।
0: अच्छा।
1: फिर घर आकर जब उनको सुनाती थी, तो सबको बहुत अच्छा लगता था, मुझे भी लगता था ये कैसे लिखा गया।
0: हाँ।
1: मतलब मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी और ने लिखा है।
0: जी।
1: फिर वो लिखने लगी, फिर धीरे धीरे मैं फिर उस स्पिरिचुअल ग्रुप से जुड़ी।
0: अच्छा।
1: फेसबुक पर अब उसमें जो था मैं अपनी ये रचनाएं डालने लगी। तो मोस्टली मैं तब कृष्णा के लिए ही लिखती थी।
0: अच्छा।
1: लिखते लिखते फिर धीरे धीरे कुछ और भी भाव होने लगा, जैसे मैं कभी गार्डन में गई।
0: हाँ।
1: तो दो तीन लेडीज जैसे बैठी हुई थी वहाँ।
0: हाँ।
1: तो वो बहुत परेशान, उन्होंने अपनी कुछ स्टोरी बताई।
0: हाँ।
1: तो मतलब मैं भी सेंट्री हो जाती थी कुछ, मैं भी ना ऐसी हूँ कि जल्दी मेरे भाव को छू जाती है किसी भी बात में। तो उन्होंने जब वो सुनाती थी, तो मुझे लगता था कि मुझे इनके लिए कुछ लिखना चाहिए, तो मैं उसी के ऊपर अपने शब्दों में स्टोरी लिखती थी। वो जो स्टोरी सबको सुनाती थी ना, तो सबको अच्छी लगती थी।
0: हाँ।
1: बस मेरा इंटरेस्ट वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, फिर मैं साहित्यिक ग्रुप से जुड़ी, उसमें अपना आंगना करके मेरा साहित्यिक ग्रुप है।
0: अच्छा।
1: उसमें हम लोग सीखने सिखाने का रखते हैं, जैसे कि दोहा है, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी उसमें, फिर जैसे दोहा है, छंद है, मुक्तक है, कविता तो मैं छंद मुक्ति लिखती हूँ।
0: अच्छा।
1: बस इस तरह से मेरा धीरे धीरे लिखने का शौक बढ़ता चला गया।
0: जी, आपसे ऐसी बातचीत हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM, और आज हमारे सेलिब्रिटी शो में हमारे साथ जुड़ी है नीलम गोयल जी, जो हिंदी की साहित्यिक है, हिंदी की स्नातक है, और आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM ओनली।

0: ब्रेक के बाद आप सभी से जुड़ रहे हैं सेलिब्रिटी शो में। हमारे साथ आज की सेलिब्रिटी है नीलम गोयल मैडम, और जो हमें बहुत कुछ आज कथाएं सुनवाने वाली है, कविताएं सुनवाने वाली है। मैडम आप मतलब हम सब लेडीज हैं, तो हमारी हमें डेली परेशानियां होती है, घर का भी देखना पड़ता है, और जो नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं वो भी वहाँ पे मतलब बच्चों का देखना, घर का देखना और ऑफिस का भी काम देखना, दोनों स्तर पर हम लोग काम करते हैं, लेकिन बेटियों को वो स्थान नहीं मिलता जो आज के समाज में मिलना चाहिए, उसकी जरूरत है। और उसके ऊपर जो आप मैंने आपकी सुनी है वो कविता मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ हमारे आचार्य 90 FM के दर्शकों को भी वो सुनवाए। तो जरूर आपने वो आप बेटी के दर्द दुख को समझती है और उसके बारे में आपने लिखा है, तो वो जरूर हमें सुनवाइए।
1: ये सच बात है कि हमारे समाज में आज भी बेटियां बहुत कुछ आगे कर रही हैं, लेकिन ना फिर भी कहीं ना कहीं उनको उनका दमन होता है, कहीं ना कहीं उनको रोका जाता है और वो अपनी इच्छाओं से हर कुछ नहीं कर पाती हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बेटी केवल एक शब्द नहीं है, ये एक एहसास है और एक ऐसा प्यारा रिश्ता है जो जन्म से पहले ही दिलों से जुड़ जाता है। आज मैं उसी अनमोल रिश्ते बेटी पर अपनी भावनाएं प्रस्तुत करती हूँ। बेटी ईश्वर की सबसे सुंदर रचना, जिसका जिसकी हंसी से घर आंगन में बसंत उतर आता है।
0: क्या बात,
1: उसकी हंसी में ही संसार की रौनक बसती है और जिसकी आंखों में भविष्य के अनगिनत सपनों की किरणें झिलमिलाती हैं। वो केवल किसी घर की लाड़ली ही नहीं है केवल, बल्कि हर समाज की वो आत्मा है, हर संस्कृति की पहचान है। बेटी के रूप में ही संवेदना जन्म लेती है और ममता अपना अर्थ पाती है और भविष्य अपनी दिशा।
0: वाह क्या बात,
1: आज बेटी दिवस पर हमें ये स्मरण करना है कि बेटी का सम्मान केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि जीवन भर निभाया जाने वाला वो संस्कार है। हर बेटी को पढ़ने का, लिखने का, अपनी इच्छा से उड़ने का, स्वयं को पहचानने का अधिकार है
0: जी।
1: क्योंकि जब एक बेटी आगे बढ़ती है तो एक पूरा युग प्रकाशमान होता है
0: जी। बिल्कुल,
1: आज की बेटी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, विज्ञान में, साहित्य में, खेल में, राजनीति में, पाक कला में, मतलब कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ वो पहुंची नहीं है
0: जी।
1: हर जगह उसने अपनी पहचान बनाई है।

0: की उड़ान आसमानों को छू रही है, परंतु विडम्बना ये है कि कुछ स्थानों पर आज भी बेटी के साथ भेदभाव, अत्याचार और शोषण का सामना उसको करना ही पड़ता है
1: जी।
0: ये सब हमें झकझोरता है, मन को परेशान कर देता है और सोचने के लिए विवश करता है और हमें सजग भी करता है
1: जी।
0: कि कोई भी बेटी अब भय और अन्याय की छाया में ना रहे, बेटी का सम्मान, सुरक्षा, उसकी देखभाल, स्वावलंबन और हमारा नैतिक, सामाजिक, मानवीय दायित्व तो है कि बेटी आस्था भी है, प्रेरणा भी है, उससे ही धरती की मुस्कान जीवित है
1: जी।
0: इसलिए बेटी केवल उत्सव नहीं, एक चेतना है, एक संकल्प है। बेटी पर कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है जो आपसे साझा करती हूँ। नन्ही सी हसी में उजियारा बसे
1: जी,
0: हर सपने में उसका सितारा बसे, न रोको उड़ाने, न रोको उड़ाने ये फलक छूले, न रोको उड़ाने ये फलक छूले, हर बेटी में ही तो सारा जहां बसे।
1: वाह,
0: बेटी मुस्कान है, बेटी अरमान है, जीवन की हर राह में वरदान है। आओ प्रण करें आज हम सभी, हर बालिका का सम्मान हमारा मान।
1: वाह, यस, वेरी नाइस। अभी ये कविता है तो हम सुन रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कथाएं भी लिखती हैं, तो आपकी कथा कहाँ और कथा और कविता कहाँ कहाँ प्रस्तुत करती हैं?
0: कथाएं और कविता, ये हमारा एक साहित्यिक ग्रुप है, उसमें हाँ, भेजती हूँ, कुछ किताबों में भी छपती हैं। और मैं बहुत पहले जब मैं शादी होकर ही आई थी
1: हाँ,
0: तो वहाँ हम लोग होली का
1: त्योहार
0: मनाते थे
1: जी।
0: होली के बाद हमारे यहाँ 8 दिन तक ये लेडीज को बुलाना और
1: अच्छा,
0: खिलाना पिलाना उस सब मनाते थे, जिसको जो रुचि होती थी वो आपस में
1: हाँ,
0: शेयर करता था
1: हाँ।
0: तो इसी तरह से एक बार हमने बुलाया हुआ था सबको
1: हाँ,
0: और मैंने उन्हीं लेडीज के ऊपर एक कुछ छोटी सी कहानी
1: अच्छा,
0: सुनाई, और वो मेरी फिर अमर उजाला अखबार में
1: क्या बात निकली है?
0: हाँ। निकली तो फिर लोगों को पता लगा कि आप लिखती हो, क्या होता है ना, हम लिखते तो हैं
1: हाँ,
0: लेकिन हमारी जो हमें उत्साह जो मिलता है वो और उसे मिलता है
1: जी,
0: जो पढ़ते हैं
1: हाँ।
0: जब हमारा उत्साह वर्धन होता है ना तो हमारा और इच्छा करती है, हाँ शायद हमने कुछ अच्छा लिखा,
1: अच्छा
0: है,
1: लिखा है,
0: कुछ और इससे भी अच्छा करके दें
1: हाँ।
0: तो बस इसी तरह से धीरे धीरे धीरे धीरे मेरा लिखने का शौक बना। फिर और मैं जिस परिवार में से दूसरे परिवार में गई थी तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अपोजिट था। तो वहाँ क्या होता था मतलब बहुत सिंपल, बहुत अच्छे लोग हैं हमारे
1: हाँ,
0: वो भी, लेकिन जो रहन सहन और जो ख्याल थे वो थोड़े अलग थे
1: जी।
0: मतलब इतना डिफरेंस था कि मेरे को वो लोग बिलायती बहू कहने लगे थे।
1: अच्छा।
0: पर एक समय ऐसा आया कि जब उन्होंने मेरे विचारों को सुनते थे
1: हाँ,
0: मेरी सेवा को देखते थे, तो धीरे धीरे मेरी उन्होंने लिखी हुई चीजें भी पढ़ते थे, तो उनको उन्होंने फिर मतलब इतना मान सम्मान दिया कि जो मेरे बड़े लोग थे ना
1: हाँ,
0: वो भी मेरे को ऐसे इनवाइट करते थे, मैं आपको वो किस्से में बता नहीं सकती कि वो सबके बीच में मेरे को किस तरह से खड़ा करके फिर मेरा बताते थे लोगों को।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो इस तरह से मेरा उत्साह वर्धन बहुत हुआ
1: हाँ,
0: फिर मैंने साहित्य ग्रुप से जुड़ी तो उसमें लिखना शुरू किया
1: जी।
0: तो एक बार मैंने अपनी फ्रेंड के ऊपर संस्मरण लिखा, जब संस्मरण लिखा तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और बोले ये तो मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं पढ़ रही हूँ तो जैसे मैं सामने रेखा चित्र कर दिया हो ऐसा लग रहा है। तो उससे मैं बहुत प्रेरित हुई, उत्साहवर्धन हाँ, हुआ। फिर उन्होंने एक बोले कि आपको कहानियां लिखनी है
1: जी।
0: मैंने कहा मैंने ऐसी कहानियां हाँ, नहीं लिखी है
1: हाँ।
0: तो बोलते हैं कि नहीं नहीं आप कोशिश कीजिए, आप लिखोगी, आप लिख सकते हो
1: जी।
0: फिर मैंने दो कहानियां लिखी जिसमें से एक मेरी पास हुई और उन्होंने इस कहे अनकहे
1: हाँ,
0: शब्दों के कैनवास में
1: अच्छा,
0: छपी
1: छपी हाँ।
0: इससे पहले क्या था ना, छोटी छोटी बुक्स में छोटी छोटी उसमें निकल रही हाँ, थी एक जैसे ये है
1: आखर लिखता हाँ,
0: इसमें ये वर्ष में 3 निकलती थी
1: अच्छा।
0: तो उसमें एक बार एक कविता निकली, एक बार वो मेरी कहानी निकली
1: अच्छा।
0: बस उससे मैं प्रेरित हुई और फिर मैंने लिखना शुरू किया
1: जी। अभी आप सामाजिक कार्य से भी जुड़े हैं, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आप कैंसर पेशेंट से ज्यादा मतलब उनसे ज्यादा मिलते हैं, तो वो सामाजिक कार्य की रुचि आपने कैसे?
0: वो क्या था ना, मेरे अंदर ना ये शुरू से सेवा का भाव था।
1: अच्छा।
0: जब मैंने ग्रेजुएशन करके चुकी तो 1 महीने की छुट्टी थी
1: जी,
0: और शायद मेरी को देखने वाले भी कुछ लोग आने वाले थे घर पर। तो उस बीच मैंने घर में कहा कि अभी तो मुझे शादी नहीं करनी है, मेरे को जो है
1: पढ़ना
0: लॉ करना है
1: अच्छा,
0: मुझे आगे लॉ करना है
1: हाँ।
0: तो सब हम लोग बोले कि हाँ हाँ हो गया लॉस, अब हो गया
1: अच्छा,
0: बस अब क्या और क्या करना है। मैंने कहा मेरे को अच्छा स्कूल में टीचिंग करनी है।
1: अच्छा,
0: तो कहा ठीक है, मैंने कहा विदाउट पे करनी है। तो हाँ, पास में एक स्कूल था छोटा सा,
1: हाँ,
0: और उसमें मैं जाने लगी। वन अच्छा, मंथ मैंने पढ़ाया। अब उसमें जो था एक बच्चा भी था, वो धीरे धीरे मुझसे बहुत अटैच हो गया और बोला दीदी मैं आपसे और भी पढ़ना चाहूँ। मैंने कहा ठीक है तुम घर आ जाए करो।
1: अच्छा,
0: हाँ, वो घर आने लगा, मैंने उसको पढ़ाया।
1: हाँ,
0: उसका नंबर्स बहुत अच्छे आए।
1: हाँ,
0: कुछ नहीं वो हो गया, मेरी शादी भी हो गई।
1: हाँ,
0: 25 साल बाद मेरे पास कॉल आती है उसकी।
1: अच्छा,
0: कि हेलो दीदी बोल रही है। मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं? मैं राजू बोल रहा हूँ। मैंने कौन राजू?
1: हाँ,
0: अरे दीदी आप भूल गई, मैं वही राजू हूँ जिसको आपने घर पे बैठ के पढ़ाती थी यार।
1: अच्छा,
0: आज मैं इस पोस्ट पर हूँ, आया है, नौकरी कर रहा हूँ, बेंगलोर में हूँ।
1: क्या बात है,
0: मतलब मैं वो पड़ी थी उस समय खुशी की वजह से।
1: हाँ,
0: तो ये मेरे को ना शुरू से था।
1: हाँ,
0: और इसके बाद फिर मेरी जब शादी हो गई तो एक पास में एक दूध जिनके यहाँ से आता था।
1: हाँ,
0: जैन मंदिर के बराबर में उनकी दूध का, हाँ, गाय वगैरह रखते थे।
1: हाँ,
0: तो वो जब लेते थे उनसे।
1: हाँ,
0: तो उसके एक भाई की ना डेथ हो गई थी, उसके बच्चे थे।
1: हाँ,
0: तो वो परेशान थे और मुझे लगता था शायद अभी इनके घर वाले इन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे।
1: हाँ,
0: तो मैंने उनको बोला मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मेरे दो बच्चे हो चुके थे तब तक।
1: हाँ,
0: ये वो चले जाते हैं, तुम इस बीच आ जाए करो, मैं काम निपटा के 11 बजे करी तुमको टाइम दूंगी।
1: अच्छा,
0: उसको इतना अच्छा पढ़ना आ गया।
1: हाँ,
0: कि उसने 12th पास किया।
1: क्या बात है।
0: और मतलब वो अपनी लाइफ में शादीवादी हो गई।
1: हाँ,
0: सेट हो गई।
1: जी,
0: तो मुझे ये शुरू से कुछ आदत थी। अब यहाँ जब इन्होंने VRS लिया बैंक से, स्टेट बैंक में मेरे हस्बैंड
1: हाँ, काम करते थे।
0: हाँ, तो जब उन्होंने VRS लिया तो सब लोग बोले कि अरे इतने वो ले रहे हैं और आप परेशान हो जाओगी।
1: हाँ,
0: घर में रह के क्या करोगी, ये सारे दिन चाय बनवाएंगे और कॉफी बनवाएंगे, सारे दिन तुम बिजी रहोगी, परेशान हो जाओ। मैंने कब जो होगा, मैंने उनको समझा लिया अगर हाँ, वो इसमें खुश है
1: हाँ,
0: VRS लेने में, तो मुझे कोई हर्ज नहीं है।
1: जी,
0: तो उन्होंने जब लिया तो यही लगा कि अब हम क्या करें।
1: हाँ,
0: क्योंकि टाइम एक्सेस में रहता था, सुबह सुबह टिफिन बना के नहीं देना और
1: बराबर,
0: बच्चे भी बड़े हो गए, अपनी नौकरी में चले गए थे बच्चे। तो ये जो राम मंदिर का ये जब हुआ,
1: हाँ,
0: तो प्रसाद देने कुछ लोग घर पर आए। जब घर पर आए तो मैं हमने उनकी आरती उतारी।
1: अच्छा,
0: आरती उतारी और घर पे बिठा के उनको पानी वानी देने के लिए कहा। तो वो बहुत खुश हुए, RSS के लोग थे।
1: जी,
0: जब वो उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद उनका कॉल आया कि ऐसे ऐसे आप लोग उससे जुड़िए।
1: हाँ,
0: मैंने कहा ठीक है जुड़ेंगे, आप लोग पहले घर पर आओ। ये हमको पता था कि RSS के लोगों को घर पे बुलाना चाहिए।
1: जी,
0: तो वो लोग धीरे धीरे हमारे यहाँ आने लगे, कभी लंच पर कभी ब्रेकफास्ट पर।
1: जी,
0: तो उन्होंने कहा, मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा मेरे को ना कुछ करने का मन करता है अभी।
1: हाँ,
0: ऐसा लगता है मैं अभी कुछ कर नहीं रही, बेकार हूँ। तो वो बोले ठीक है आप ऐसे ऐसे करके आइए।
1: हाँ,
0: हनुमान टेकड़ी पर साइन कोलीबारा में, वहाँ कैंसर पेशेंट्स का है, और आप आइए वहाँ, आइए आपको अच्छा लगेगा, फिर आपको जिम्मेदारी देंगे।
1: ठीक है,
0: वहाँ गए। वहाँ गए तो क्या हुआ, वहाँ पेशेंट्स थे, मैं सबसे मिलने जाती थी। फिर उन्होंने एक रूम का मेरे को चार्ज दे दिया।
1: अच्छा,
0: कि आप इन लोगों से कांटेक्ट में रहिए, देखिए इनपे क्या चीज है, इनको मेंटली सपोर्ट कीजिए। तो हम उनसे जाके कभी कभी उनको भजन सुनाती थी, कभी उनसे बात करती थी, क्योंकि क्या
1: बात करने से भी वो खुल जाते हैं,
0: क्योंकि क्या है ना
1: इमोशनली अच्छे रहते हैं।
0: क्या है ना, पेशेंट्स जो है मुझे लगता है कि वो
1: डिप्रेशन में
0: से नहीं जाता।
1: हाँ,
0: वो सोच कर चला जाता
1: है। जी,
0: फिर हम लोगों की एनकोलॉजी को लेकर क्लासेस हुई, ट्रेनिंग हुई हमारी, तीन दिन की क्लास चलती थी कि उनको साथ हम लोगों को कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है, क्या उनके सामने नहीं कहना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता। कुछ दिन तो क्या हुआ, जब हम घर आते थे ना तो मैं सो नहीं पाती थी।
1: हाँ, उनका दुख दर्द देख के
0: सो नहीं पाती थी। तो ये भी समझाते थे, उन लोगों ने समझाया देखो ऐसे सेवा नहीं हो सकती है, आपको यही छोड़कर जाना होगा।
1: हाँ,
0: यही छोड़कर जाना होगा जो भी देखा है।
1: जी,
0: उनके साथ आप अच्छा एटीट्यूड कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, लेकिन घर जाकर नहीं लेना है, पर आप पढ़ जाओगे क्या फायदा है।
1: बराबर।
0: फिर बस वो धीरे धीरे वहाँ पता लगा हमको, स्लम एरिया में स्कूल्स खोल रखे थे उन लोगों ने, फ्री ये शाला फ्री चला रखी थी स्लम एरिया के बच्चों के लिए। तो वहाँ उन लोगों ने, मैं गई देखने, कभी मैं स्लम एरिया में नहीं गई थी।
1: राइट। हाँ,
0: लेकिन मतलब मेरे को दिक्कत भी लगती थी, मुंह बंद करके जाती थी कई बार, और कई बार बहुत कीचड़ नीचे भी होती थी, तो शूज पहन के साड़ी पहनना बंद कर दिया था, टाइट कपड़े पहनना शुरू कर दिया था, गिरे ना कहीं, और वो बिल्कुल ऐसी रेलिंग होती थी कि देखकर लगता था
1: कैसे रहते हैं
0: हम लोग, इतने बड़े बड़ों में रह के लगते हैं हमको ये परेशानी, हमको ये परेशानी, वो लोग कैसे रह रहे हैं। तो धीरे धीरे करके मतलब मैं पर्सनली उन लोगों से इतनी अटैच हो गई, उन लोगों ने फिर मेरे को निरीक्षण बना दिया।
1: अच्छा,
0: 35 शालाओं का निरीक्षण था, तो जो हम लोगों को हम, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जाते थे, बस इसी तरह से धीरे धीरे करके
1: वो समाज कार्य बढ़ता गया आपका।
0: किशोरी वर्ग शुरू किया फिर हम लोगों ने, जैसे किशोरी बच्चों के लिए 8 वर्ष से और 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, जैसा कि आजकल माहौल चल रहा है तो उनको सेव करना, उनको गाइड करना है,
1: राइट,
0: तो
1: वो भी करते हैं।
0: तो बस सब काम होते थे घर के भी, और बहुत एक्टिव रहती थी, ऐसा नहीं था कि कोई काम छोड़ के जा रही हूँ, का भी सारा काम होता था
1: बराबर,
0: और आके बस
1: और आप ज्यादा
0: सोते थे,
1: प्रफुल्लित होते थे,
0: होता था कि हमने हमारे कुछ तो किया तो हुआ।
1: तो अभी अंत में आपकी एक सुंदर सी कविता वापस सुनते हैं और ये जो शो का अंत करते हैं, ठीक है?
0: ठीक जी,
1: आप कौन सा कविता, कौन सी कविता पढ़ना चाहोगे जिंदगी के बारे में, अभी हम जिंदगी के बारे में इतने
0: जिंदगी
1: के बारे में सुनते हैं,
0: ये कर लेगी छोटा सा है
1: जी,
0: चलेगा
1: चलेगा या
0: जिंदगी, जिंदगी है तो सब कुछ है, कहते हैं ना
1: जी
0: जिंदगी, इसके लिए मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, बहुत छोटी सी, शायद आपको पसंद आए
1: जी, बिल्कुल।
0: जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ, जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ, ये घड़ी, ये धूप, ये दिन, ये रात, कल भी आई थी,
1: आज भी आई है,
0: कल भी आई थी और आज भी आई है, किसी को ये सिंहासन देगी और किसी के लिए बेबसी देगी, ये सूरज जो सिर पे चढ़ा है शाम को पाँव में उतर जाएगा, इसी तरह ये सांस का राही क्या पता किस पाँव पर रुक जाएगा,
1: क्या बात,
0: इसी तरह ये सांस का राही क्या पता किस तरह किस पाँव पर रुक जाएगा, गीत गाओ स्नेह का संसार लाई हूँ, जिंदगी मैं तेरे लिए
1: प्यार लाई हूँ, क्या बात,
0: नई आशा, नए सपने, नए संकल्प, मैं बुलंदी का सघन विस्तार लाई हूँ, मैं बुलंदी का सघन विस्तार लाई हूँ, मुस्कराओ मुस्कराओ आज मैं उपहार लाई हूँ, जिंदगी तेरे लिए
1: मैं प्यार लाई हूँ, क्या बात है कितना पॉजिटिव अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ, मतलब जिंदगी के ऊपर अपने बहुत अच्छा अच्छे से लिखा है, और आज हमारे आचार्य 90 FM से आप जुड़े हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप ऐसे ही लिखते रहिए, मिलते रहिए और हमें हमेशा कुछ ना कुछ देते रहिए, थैंक यू सो मच जी।

0: नमस्ते दर्शकों, आज हम सेलिब्रिटी शो में हमने आमंत्रित किया है नीलम गोयल जी को। नीलम जी नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: आपका स्टूडियो में भी स्वागत है और हमारे आचार्य 90 FM पे स्वागत है और सेलिब्रिटी शो में भी आपका स्वागत है। नीलम जी गोयल एक स्नातक, आगरा यूनिवर्सिटी की स्नातक रही हैं और कुकिंग क्लासेस, लिखना पढ़ना, समाज सेवा, सोशल वर्क, इन स्लम एरिया इनका कार्य रहा है। काउंसलिंग फॉर कैंसर पेशेंट्स, लोगों से मिलना और मुक्त छंद की कविताएं लिखती है, कृष्ण के भजन गाती है और आखर मुक्ता साहित्यिक पत्रिका में स्वरचित कविताओं का उनका गीत का छपना हुआ है। कहे अनकहे शब्दों का कैनवास इस कहानी संग्रह में स्वयं रचित कहानी मुट्ठी भर सपने का भी छपना हुआ है। साहित्यिक प्रतियोगिताओं में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित 21 सर्वश्रेष्ठ कहानियां पत्रिका को उन्होंने जीता है और पतंजलि योग पीठ से प्रमाणित योग शिक्षिका भी रह चुकी है। बहुत सारे ये सब आप वही पूछना चाहूंगी, इतना सारा आप व्यस्त रहती है, पूरा 24 घंटे भी आपको कम पढ़ते रहेंगे, तो ये सब आप मैनेज कैसे करती है वो शुरू में ही करना?
1: बस मेरे को ना कुछ है कि मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है
0: जी।
1: और इन सब चीजों से मैं बचपन से थोड़ी प्रेरित रही हूँ, क्रिएटिव मैं शुरू से ही थी
0: जी।
1: और ये जो पढ़ने का शौक मुझे लगा वो मेरी मदर से लगा।
0: अच्छा।
1: क्योंकि वो उस समय भी ना ये कौन कौन सी पुस्तिकाएं होती थी, धर्मयोग,
0: हाँ।
1: और ये कादम्बिनी, इस तरह की मतलब हाई लेवल की बुक्स पढ़ती थी। वो 12th पास थी उस समय की,
0: हाँ।
1: लेकिन कोई जॉब नहीं किया था,
0: हाँ।
1: तो बस मुझे वो उनको पढ़ते देखती थी और धीरे धीरे धीरे धीरे मेरे को रीडिंग करने की जो मिल जाता था, धर्मयोग, कोई भी पत्रिका, अखबार, मतलब जो भी मिल गया, हाँ। वो मुझे उसको पढ़ना है।
0: वाह, वेरी नाइस। आपके साहित्य के बारे में हमें बहुत कुछ जानना है, लेकिन आप कविताएं, जैसे हमारी पहली मुलाकात में आप मैं जान गई थी, आप बहुत कथा सुंदर से प्रस्तुत करते हैं, कविताएं भी लिखती हैं, तो जाहिर सी बात है अभी आपने माँ का जिक्र किया तो हमारी सबकी शुरुआत तो माँ से ही होती है, तो माँ के ऊपर आपने जो कविता लिखी है वो हमें सुनाइए प्लीज।
1: सबका धन्यवाद, नमस्ते। माँ केवल एक शब्द ही नहीं है, माँ बल्कि असीम शक्ति, ममता और आस्था का स्वरूप है। जब जीवन में अंधेरा छा जाता है तो माँ का नाम ही एक दीपक बनकर हमारे जीवन में उजाला करता है और रास्ता दिखाता है। आज उसी जगत जननी शक्ति स्वरूपा माँ के चरणों में, श्री चरणों में अपनी भावनाओं का ये छोटा सा भजन अर्पित करने जा रही हूँ, श्रद्धा भक्ति के साथ आप सब जुड़िए
0: जी।
1: पधारो माँ पूजा को, पधारो।

0: सजाया है।
1: क्या बात है, वेरी नाइस। जय माता दी। मेरा मन तो गंगा मैया के यहाँ पहुंच गया वाराणसी में, क्योंकि कितनी सुंदर, मतलब हम वो गंगा मैया को माँ कहते, पुकार के बुलाते हैं, और जो गंगा आरती का जो विलोभनीय दृश्य हमें अभी आपकी ये कविता में, ये पद में साकार हुआ, वेरी नाइस, वेरी, मतलब वेरी टचिंग। अभी शुरू करते हैं कि आपका जो साहित्य प्रवास है, आपने जैसे बोला कि माँ बहुत बुक्स घर में रहते थे, तो आप पढ़ते गए मतलब जो शैक्षणिक, जो भी हमारा स्कूल का पढ़ना रहता है वो अलग, और आपको हिंदी में ज़्यादा रुचि है, तो आपने बीए इन हिंदी भी वैसे किया है, तो हिंदी के प्रति लगाव या फिर आशा, आपको कौन से लेखक पसंद है हिंदी के, उसके बारे में और क्यों पसंद है?
2: मेरे को मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ बहुत पसंद हैं
1: जी,
2: और रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियाँ बहुत, क्योंकि ये ना हमारे आसपास जो दिखता है उन सब से जुड़ी हुई है, सामाजिक समस्याएं, स्त्री की समस्याएं, और समाज में जितनी भी व्यभिचार या जितना उत्पीड़न होता है, तो उन सब के ऊपर जो कहानियाँ लिखी है, तो मुझे वो बहुत टचिंग भावपूर्ण होती है, और मेरे को ना कहीं गहरे तक, ऐसे ही ना क्या हुआ, कभी मैंने कहीं किसी से कुछ सुना, मेरी बड़ी दीदी है,
1: हाँ।
2: तो वो भी साहित्यिक में बहुत
1: अच्छा रुचि
2: रखती हुई है, बहुत ज्यादा, हाँ
1: अच्छा।
2: तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मेरे को उसमें मैं लिखने लगी, लिखते लिखते क्या हुआ, जुहू में रहते थे हम लोग, तो वहाँ कृष्ण मंदिर था
1: जी,
2: वॉकिंग डिस्टेंस पे,
1: हाँ।
2: तो मैं सडनली मैंने सोच लिया था कि मैं वहाँ जाके पहले दर्शन करके फिर ही नाश्ता किया करूंगी,
1: हाँ।
2: वहाँ जाके जब मैं पिन ड्रॉप साइलेंस होकर शांति के साथ जब बैठती थी ना,
1: हाँ।
2: तो बस भगवान का चेहरा देखती थी, तो उस चेहरे को देखकर मेरे को अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो मैं जब उनको देखती थी ना, तो मेरे को रोना आता था,
1: अच्छा।
2: और रोते रोते धीरे धीरे धीरे धीरे वो भाव उत्पन्न होने लगा,
1: हाँ हाँ।
2: और पता लगा मैं तो वहाँ बैठे बैठे मोबाइल में ही उस समय जो आता था उस समय लिखती थी,
1: अच्छा।
2: फिर घर आकर जब उनको सुनाती थी तो सबको बहुत अच्छा लगता था, मुझे भी लगता था ये कैसे लिखा गया,
1: हाँ।
2: मतलब मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी और ने लिखा है
1: जी।
2: फिर वो लिखने लगी, फिर धीरे धीरे मैं फिर उस स्पिरिचुअल ग्रुप से जुड़ी,
1: अच्छा।
2: फेसबुक पर अब उसमें जो था मैं अपनी ये रचनाएं डालने लगी, तो मोस्टली मैं तब कृष्णा के लिए ही लिखती थी,
1: अच्छा।
2: लिखते लिखते फिर धीरे धीरे कुछ और भी भाव होने लगा, जैसे मैं कभी गार्डन में गई,
1: हाँ।
2: तो दो तीन लेडीज जैसे बैठी हुई थी वहाँ,
1: हाँ।
2: तो वो बहुत परेशान, उन्होंने अपनी कुछ स्टोरी बताई,
1: हाँ।
2: तो मतलब मैं भी सेंट्री हो जाती थी कुछ, मैं भी ना ऐसी हूँ कि जल्दी मेरे भाव को छू जाती है किसी की बात में, तो उन्होंने जब वो सुनाती थी तो मैं मुझे लगता था कि मुझे इनके लिए कुछ लिखना चाहिए, तो मैं उसी के ऊपर अपने शब्दों में
1: लिखते थे,
2: स्टोरी लिखती थी, वो जो स्टोरी सबको सुनाती थी ना, तो सबको अच्छी लगती थी,
1: हाँ।
2: बस मेरा इंटरेस्ट वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, फिर मैं साहित्यिक ग्रुप से जुड़ी, उसमें अपना आंगना करके मेरा साहित्यिक ग्रुप है,
1: अच्छा।
2: उसमें हम लोग सीखने सिखाने का रखते हैं, जैसे कि दोहा है, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी उसमें, फिर जैसे दोहा है, छंद है, मुक्तक है, कविता, तो मैं छंद मुक्ति लिखती हूँ,
1: अच्छा।
2: बस इस तरह से मेरा धीरे धीरे

0: का शौक बढ़ता चला गया
1: जी। आपसे ऐसी बातचीत हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM। और आज हमारे सेलिब्रिटी शो में हमारे साथ जुड़ी है नीलम गोयल जी, जो हिंदी की साहित्यिक है, हिंदी की स्नातक है। और आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM ओनली।

0: ब्रेक के बाद आप सभी से जुड़ रहे हैं सेलिब्रिटी शो में। हमारे साथ आज की सेलिब्रिटी है नीलम गोयल मैडम, और जो हमें बहुत कुछ आज कथाएं सुनवाने वाली है, कविताएं सुनवाने वाली है। मैडम आप मतलब हम सब लेडीज हैं, तो हमारी हमें डेली परेशानियां होती है, घर का भी देखना पड़ता है, और जो नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं वो भी वहाँ पे मतलब बच्चों का देखना, घर का देखना और ऑफिस का भी काम देखना, दोनों स्तर पर हम लोग काम करते हैं, लेकिन बेटियों को वो स्थान नहीं मिलता जो आज के समाज में मिलना चाहिए, उसकी जरूरत है। और उसके ऊपर जो आप मैंने आपकी सुनी है वो कविता मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ हमारे आचार्य 90 FM के दर्शकों को भी वो सुनवाए, तो जरूर अपने वो आप बेटी के दर्द दुख को समझती है और उसके बारे में आपने लिखा है, तो वो जरूर हमें सुनवाइए।
1: जी बिल्कुल, ये सच बात है कि हमारे समाज में आज भी बेटियां बहुत कुछ आगे कर रही हैं, लेकिन ना फिर भी कहीं ना कहीं उनको उनका दमन होता है, कहीं ना कहीं उनको रोका जाता है और वो अपनी इच्छाओं से हर कुछ नहीं कर पाती हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बेटी केवल एक शब्द नहीं है, ये एक एहसास है और एक ऐसा प्यारा रिश्ता है जो जन्म से पहले ही दिलों से जुड़ जाता है। आज मैं उसी अनमोल रिश्ते बेटी पर अपनी भावनाएं प्रस्तुत करती हूँ। बेटी ईश्वर की सबसे सुंदर रचना, जिसका जिसकी हंसी से घर आंगन में बसंत उतर आता है,
0: क्या बात,
1: उसकी हंसी में ही संसार की रौनक बसती है और जिसकी आंखों में भविष्य के अनगिनत सपनों की किरणें झिलमिलाती हैं, वो केवल किसी घर की लाडली ही नहीं है केवल, बल्कि हर समाज की वो आत्मा है, हर संस्कृति की पहचान है। बेटी के रूप में ही संवेदना जन्म लेती है और ममता अपना अर्थ पाती है और भविष्य अपनी दिशा।
0: वाह क्या बात,
1: आज बेटी दिवस पर हमें ये स्मरण करना है कि बेटी का सम्मान केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि जीवन भर निभाया जाने वाला वो संस्कार है। हर बेटी को पढ़ने का, लिखने का, अपनी इच्छा से उड़ने का, स्वयं को पहचानने का अधिकार है
0: जी।
1: क्योंकि जब एक बेटी आगे बढ़ती है तो एक पूरा युग प्रकाशमान होता है
0: जी। बिल्कुल,
1: आज की बेटी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, विज्ञान में, साहित्य में, खेल में, राजनीति में, पाक कला में, मतलब कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ वो पहुंची नहीं है
0: जी।
1: हर जगह उसने अपनी पहचान बनाई है, उसकी उड़ान आसमानों को छू रही है, परंतु विडंबना ये है कि कुछ स्थानों पर आज भी बेटी के साथ भेदभाव, अत्याचार और शोषण का सामना उसको करना ही पड़ता है
0: जी।
1: ये सब हमें झकझोरता है, मन को परेशान कर देता है और सोचने के लिए विवश करता है और हमें सजग भी करता है
0: जी।
1: कि कोई भी बेटी अब भय और अन्याय की छाया में ना रहे, बेटी का सम्मान, सुरक्षा, उसकी देखभाल, स्वावलंबन और हमारा नैतिक, सामाजिक, मानवीय दायित्व तो है कि बेटी आस्था भी है, प्रेरणा भी है, उससे ही धरती की मुस्कान जीवित है। इसलिए बेटी केवल उत्सव नहीं, एक चेतना है, एक संकल्प है। बेटी पर कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है जो आपसे साझा करती हूँ। नन्ही सी हंसी में उजियारा बसे, हर सपने में उसका सितारा बसे, न रोको उड़ाने, न रोको उड़ाने ये फलक छूले, न रोको उड़ाने ये फलक छूले, हर बेटी में ही तो सारा जहां बसे। बेटी मुस्कान है, बेटी अरमान है, जीवन की हर राह में वरदान है। आओ प्रण करें आज हम सभी हर बालिका का सम्मान, हमारा मान।
0: वाह यस वेरी नाइस। अभी ये कविता है तो हम सुन रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कथाएं भी लिखती हैं, तो आपकी कथा कहाँ और कथा और कविता कहाँ कहाँ प्रस्तुत करती हैं?
1: कथाएं और कविता ये हमारा एक साहित्यिक ग्रुप है, उसमें भेजती हूँ, कुछ किताबों में भी छपती हैं। और मैं बहुत पहले जब मैं शादी होकर ही आई थी तो वहाँ हम लोग होली का
0: त्योहार
1: मनाते थे
0: जी।
1: होली के बाद हमारे यहाँ 8 दिन तक ये लेडीज को बुलाना और खिलाना पिलाना उत्सव मनाते थे, जिसको जो रुचि होती थी वो आपस में शेयर करता था। तो इसी तरह से एक बार हमने बुलाया हुआ था सबको और मैंने उन्हीं लेडीज के ऊपर एक कुछ छोटी सी कहानी
0: अच्छा
1: सुनाई और वो मेरी फिर अमर उजाला अखबार में
0: क्या बात
1: निकली। निकली तो फिर लोगों को पता लगा कि आप लिखती भी हो। क्या होता है ना, हम लिखते तो हैं लेकिन हमारी जो हमें उत्साह जो मिलता है वो औरों से मिलता है
0: जी,
1: जो पढ़ते हैं
0: हाँ।
1: जब हमारा उत्साह वर्धन होता है ना तो हमारा और इच्छा करती है हाँ शायद हमने कुछ अच्छा लिखा,
0: अच्छा
1: है,
0: लिखा है
1: कुछ और इससे भी अच्छा करके दे। तो बस इसी तरह से धीरे धीरे धीरे धीरे मेरा लिखने का शौक बना। फिर और मैं जिस परिवार में से दूसरे परिवार में गई थी तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अपोजिट था। तो वहाँ क्या होता था मतलब बहुत सिंपल बहुत अच्छे लोग हैं हमारे वो भी, लेकिन जो रहन सहन और जो ख्याल थे वो थोड़े अलग थे
0: जी।
1: मतलब इतना डिफरेंस था कि मेरे को वो लोग विलायती बहू कहने लगे थे।
0: अच्छा।
1: पर एक समय ऐसा आया कि जब उन्होंने मेरे विचारों को सुनते थे मेरी सेवा को देखते थे तो धीरे धीरे मेरी उन्होंने लिखी हुई चीजें भी पढ़ते थे तो उनको उन्होंने फिर मतलब इतना मान सम्मान दिया कि जो मेरे बड़े लोग थे ना वो भी मेरे को ऐसे इनवाइट करते थे, मैं आपको वो किस्से में बता नहीं सकती कि वो सबके बीच में मेरे को किस तरह से खड़ा करके फिर मेरा बताते थे लोगों को।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो इस तरह से मेरा उत्साह वर्धन बहुत हुआ। फिर मैंने साहित्यिक ग्रुप से जुड़ी तो उसमें लिखना शुरू किया
0: जी।
1: तो एक बार मैंने अपनी फ्रेंड के ऊपर संस्मरण लिखा, जब संस्मरण लिखा तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और बोले ये तो मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं पढ़ रही हूँ तो जैसे मैं सामने रेखा चित्र कर दिया हो ऐसा लग रहा है। तो उससे मैं बहुत प्रेरित हुई, उत्साह वर्धन हुआ। फिर उन्होंने एक बोले कि आपको कहानियां लिखनी है
0: जी।
1: मैंने कहा मैंने ऐसी कहानियां नहीं लिखी है
0: हाँ।
1: तो बोलते हैं कि नहीं नहीं आप कोशिश कीजिए आप लिखोगी आप लिख सकते हो
0: जी।
1: फिर मैंने दो कहानियां लिखी जिसमें से एक मेरी पास हुई और उन्होंने इस कहे अनकहे शब्दों के कैनवास में
0: अच्छा
1: छपी
0: छपी।
1: इससे पहले क्या था ना छोटी छोटी बुक्स में छोटी छोटी उसमें निकल रही थी, एक जैसे ये है आखर
0: लिखता
1: इसमें ये वर्ष में तीन निकलती थी
0: अच्छा।
1: तो उसमें एक बार एक कविता निकली एक बार वो मेरी कहानी निकली
0: अच्छा।
1: बस उससे मैं प्रेरित हुई और फिर मैंने लिखना शुरू किया
0: जी। अभी आप सामाजिक कार्य से भी जुड़े हैं, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आप कैंसर पेशेंट से ज्यादा मतलब उनसे ज्यादा मिलते हैं तो वो सामाजिक कार्य की रुचि आपने कैसे?
1: वो क्या था ना मेरे अंदर ना ये शुरू से सेवा का भाव था।
0: अच्छा।
1: जब मैंने ग्रेजुएशन करके चुकी तो एक महीने की छुट्टी थी
0: जी
1: और शायद मेरी को देखने वाले भी कुछ लोग आने वाले थे घर पर। तो उस बीच मैंने घर में कहा कि अभी तो मुझे शादी नहीं करनी है, मेरे को जो है
0: पढ़ना
1: लॉ करना है।
0: अच्छा।
1: मुझे आगे लॉ करना है
0: हाँ।
1: तो सब लोग बोले कि हाँ हाँ हो गया लॉ सब हो गया
0: अच्छा
1: बस अब क्या और क्या करना है। मैंने कहा मेरे को अच्छा स्कूल में टीचिंग करनी है।
0: अच्छा।
1: तो मैंने कहा ठीक है अब मैंने कहा विदाउट पे करनी है।
0: हाँ।
1: पास में एक स्कूल था छोटा सा
0: हाँ।
1: और उसमें मैं जाने लगी वन
0: अच्छा।
1: मंथ मैंने पढ़ाया
0: हाँ।
1: अब उसमें जो था एक बच्चा भी था वो धीरे धीरे मुझसे बहुत अटैच हो गया और बोला दीदी मैं आपसे और भी पढ़ना चाहूँ। मैंने कहा ठीक है तुम घर आ जाए करो
0: अच्छा। हाँ।
1: वो घर आने लगा मैंने उसको पढ़ाया
0: हाँ।
1: उसका नंबर्स बहुत अच्छे आए
0: हाँ।
1: कुछ नहीं वो हो गया मेरी शादी भी हो गई 25 साल बाद मेरे पास कॉल आती है उसकी
0: अच्छा
1: कि हेलो दीदी बोल रही है। मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं? मैं राजू बोल रहा हूँ। मैंने कौन राजू? अरे दीदी आप भूल गई मैं वही राजू हूँ जिसको आपने घर पे बैठ के पढ़ाती थी यार।
0: अच्छा।
1: आज मैं इस पोस्ट पर हूँ आया है नौकरी कर रहा हूँ बेंगलोर में मैं।
0: क्या बात है
1: मतलब मैं वो पढ़ी थी उस समय खुशी की वजह से
0: हाँ।
1: तो ये मेरे को ना शुरू से था
0: हाँ।
1: और इसके बाद फिर मेरी जब शादी हो गई तो एक पास में एक दूध जिनके यहाँ से आता था
0: हाँ।
1: जैन मंदिर के बराबर में उनकी दूध हाँ। का गाय वगैरह रखते थे
0: हाँ।
1: तो वो जब लेते थे उनसे
0: हाँ।
1: तो उसके एक भाई की ना डेथ हो गई थी उसके बच्चे थे तो वो परेशान थे और मुझे लगता था शायद अभी इनके घर वाले इन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे
0: हाँ।
1: तो मैंने उनको बोला मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मेरे दो बच्चे हो चुके थे तब तक
0: हाँ।
1: वो चले जाते हैं तुम इस बीच आ जाए करो, मैं काम निपटा के 11 बजे करी तुमको टाइम दूंगी।
0: अच्छा।
1: उसको इतना अच्छा पढ़ना आ गया
0: हाँ।
1: कि उसने 12th पास किया।
0: क्या बात है।
1: और मतलब वो अपनी लाइफ में शादीवादी हो गई
0: हाँ।
1: सेट हो गई। तो मुझे ये शुरू से कुछ आदत थी। अब यहाँ जब इन्होंने VRS लिया बैंक से
0: हाँ।
1: स्टेट बैंक में मेरे हस्बैंड
0: हाँ, काम करते थे
1: हाँ। तो जब उन्होंने VRS लिया तो सब लोग बोले कि अरे इतने वो ले रहे हैं और आप परेशान हो जाओगी घर
0: हाँ।
1: में रह के क्या करोगी, ये सारे दिन चाय बनवाएंगे और कॉफी बनवाएंगे, सारे दिन तुम बिजी रहोगी परेशान हो जाओ। मैंने कहा जो होगा मैंने उनको समझा लिया, अगर हाँ, वो इसमें खुश है वीआरएस लेने में तो मुझे कोई हर्ज नहीं है
0: जी।
1: तो उन्होंने जब लिया तो यही लगा कि अब हम क्या करें क्योंकि टाइम एक्सेस में रहता था, सुबह सुबह टिफिन बना के नहीं देना और बच्चे भी बड़े हो गए, अपनी नौकरी में चले गए थे बच्चे। तो ये जो राम मंदिर का ये जब हुआ तो प्रसाद देने कुछ लोग घर पर आए, जब घर पर आए तो मैं हमने उनकी आरती उतारी।
0: अच्छा,
1: आरती उतारी और घर पे बिठा के उनको पानी वानी देने के लिए कहा, तो वो बहुत खुश हुए। आरएसएस के लोग थे
0: जी।
1: जब वो उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद उनका कॉल आया कि ऐसे ऐसे आप लोग उससे जुड़िए। मैंने कहा ठीक है जुड़ेंगे, आप लोग पहले घर पर आओ। ये हमको पता था कि आरएसएस के लोगों को घर पे बुलाना चाहिए
0: जी।
1: तो वो लोग धीरे धीरे हमारे यहाँ आने लगे, कभी लंच पर कभी ब्रेकफास्ट पर
0: जी।
1: उन्होंने कहा, मैंने ऐसी बोला, मैंने कहा मेरे को ना कुछ करने का मन करता है अभी, हाँ, ऐसा लगता है मैं अभी कुछ कर नहीं रही, बेकार हूँ। तो वो बोले ठीक है आप ऐसे ऐसे करके आइए, हाँ, हनुमान टेकड़ी पर साइन कोलीवाड़ा में, वहाँ कैंसर पेशेंट्स का है और आप आइए, वहाँ आइए आपको अच्छा लगेगा, फिर आपको जिम्मेदारी देंगे।
0: ठीक है,
1: वहाँ गए। वहाँ गए तो क्या हुआ, वहाँ पेशेंट्स थे, मैं सबसे मिलने जाती थी, फिर उन्होंने एक रूम का मेरे को चार्ज दे दिया।
0: अच्छा,
1: कि आप इन लोगों से कांटेक्ट में रहिए, देखिए इन पे क्या चीज है, इनको मेंटली सपोर्ट कीजिए। तो हम उनसे जाके कभी कभी उनको भजन सुनाती थी, कभी उनसे बात करती थी, क्योंकि क्या
0: बात करने से भी वो खुल जाते हैं,
1: क्या है ना
0: इमोशनली अच्छे रहते हैं।
1: क्या है ना, पेशेंट्स जो है मुझे लगता है कि वो
0: डिप्रेशन में
1: से नहीं जाता,
0: हाँ,
1: वो सोच कर चला जाता है
0: जी।
1: फिर हम लोग की एनकोलॉजी को लेकर क्लासेस हुई, ट्रेनिंग हुई हमारी, तीन तीन दिन की क्लास चलती थी कि उनको साथ हम लोग को कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है, क्या उनके सामने नहीं कहना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ दिन तो क्या हुआ, जब हम घर आते थे ना तो मैं सो नहीं पाती थी,
0: उनका दुख दर्द देख
1: सो नहीं पाती थी। तो ये भी समझाते थे, उन लोगों ने समझाया देखो ऐसे सेवा नहीं हो सकती, आपको यही छोड़ कर जाना होगा, यही छोड़ कर जाना होगा जो भी देखा है
0: जी।
1: उनके साथ आप अच्छा एटीट्यूड कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, लेकिन घर जाकर नहीं लेना है, पर आप पड़ जाओगे क्या फायदा है।
0: बराबर।
1: फिर बस वो धीरे धीरे वहाँ पता लगा हमको, स्लम एरिया में स्कूल्स खोल रखे थे उन लोगों ने, फ्री ये शाला फ्री चला रखी थी स्लम एरिया के बच्चों के लिए। तो वहाँ उन लोगों ने, मैं गई देखने, अभी मैं स्लम एरिया में नहीं गई थी
0: राइट,
1: लेकिन मतलब मेरे को दिक्कत भी लगती थी, मुंह बंद करके जाती थी कई बार, और कई बार बहुत कीचड़ नीचे भी होती थी, तो शूज पहन के साड़ी पहनना बंद कर दिया था, टाइट कपड़े पहनना शुरू कर दिया था, हाँ, गिरे ना कहीं
0: जी।
1: और वो बिल्कुल ऐसी रेलिंग होती थी कि देखकर लगता था
0: कैसे रहते हैं
1: हम, इतने बड़े बड़ों में रह के लगते हैं हमको ये परेशानी, हमको ये परेशानी, वो लोग कैसे रह रहे हैं। तो धीरे धीरे करके मतलब मैं पर्सनली उन लोगों से इतनी अटैच हो गई, उन लोगों ने फिर मेरे को निरीक्षण बना दिया।
0: अच्छा,
1: 35 शालाओं का निरीक्षण था, तो जो हम लोगों को हम, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जाते थे, बस इसी तरह से धीरे धीरे करके
0: वो समाज कार्य बढ़ता गया आपका।
1: किशोरी वर्ग शुरू किया फिर हम लोगों ने, जैसे किशोरी बच्चों के लिए 8 वर्ष से और 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, जैसा कि आजकल माहौल चल रहा है तो उनको सेव करना, उनको गाइड करना है
0: राइट,
1: तो
0: वो भी करते हैं।
1: तो बस सब काम होते थे घर के भी, और बहुत एक्टिव रहती थी, ऐसा नहीं था कि कोई काम छोड़ के जा रही हूँ, का भी सारा काम होता था
0: बराबर,
1: और आके बस
0: और आप ज्यादा
1: सोते थे,
0: हाँ,
1: मतलब प्रफुल्लित होता था
0: जी,
1: कि हमने हमारे कुछ हाथ से कुछ किया। तो हुआ
0: जी। तो अभी अंत में आपकी एक सुंदर सी कविता वापस सुनते हैं और ये जो शो का अंत करते हैं, ठीक है
1: ठीक जी।
0: आप कौन सी कविता पढ़ना चाहोगे
1: बताऊँ?
0: जिंदगी के बारे में, अभी हम जिंदगी के बारे में इतने
1: जिंदगी
0: के बारे में सुनते हैं,
1: करने की छोटा सा है
0: जी,
1: चलेगा
0: या
1: जिंदगी है तो सब कुछ है, कहते हैं ना
0: जी
1: जिंदगी, इसकी ये मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, बहुत छोटी सी, शायद आपको पसंद आए
0: जी। बिल्कुल।
1: जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ, जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ, ये घड़ी ये धूप ये दिन ये रात कल भी आई थी,
0: आज भी आई है
1: कल भी आई थी और आज भी आई है, किसी को ये सिंहासन देगी और किसी के लिए बेबसी देगी। ये सूरज जो सिर पे चढ़ा है शाम को पाँव में उतर जाएगा। इसी तरह ये सांस का राही क्या पता किस पाँव पर रुक जाएगा।
0: क्या बात।
1: इसी तरह ये सांस का राही क्या पता किस तरह किस पाँव पर रुक जाएगा। गीत गाओ स्नेह का संसार लाई हूँ, जिंदगी मैं तेरे लिए
0: प्यार लाई हूँ। क्या बात।
1: नई आशा नए सपने नए संकल्प मैं बुलंदी का सघन विस्तार लाई हूँ। मैं बुलंदी का सघन विस्तार लाई हूँ, मुस्कराओ मुस्कराओ आज मैं उपहार लाई हूँ, जिंदगी तेरे लिए
0: मैं प्यार लाई हूँ। क्या बात है। कितना पॉजिटिव अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ, मतलब जिंदगी के ऊपर अपने बहुत अच्छा अच्छे से लिखा है। और आज हमारे आचार्य 90FM से आप जुड़े हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप ऐसे ही लिखते रहिए, मिलते रहिए और हमें हमेशा कुछ ना कुछ देते रहिए। थैंक यू सो मच जी।